चिल मारो।

हजूर कहंदे न सच तन वणजो सच तन संचो कबू ना आवो हारे। संसार ते आके जिना ने सच दा तन नाम दा तन खटिया है, नाम दा वणज कीता है, संसार ते आउना उना दा ही सफल होया है। जिना ने निरा दुनियावी तन दी दौड़ विच अपना जीवन बसर कर लिया, हजूर कहंदे ने कर औगण पछोतावण। क्यों? इसलिए कि ए तां कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन पाम दे राहे पीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खड़ा डरावना, कर औगण पछोतावना। ये अवगुण है क्योंकि निरंकार ने सानू ये अमोलक श्वासा की पूंजी बख्शिश की है। आख्या नौ हिस्से जेड़े समय दे हन ना ए बंदे, ये तेरे वास्ते हन, खुशियां मान आनंद मान, अपने कार विहार कर। पर श्वासा का दसवां हिस्सा जेड़ा है वो हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लाउना है। जे नहीं लावेगा ता फिर सजादा पागी होवेगा। अगों लई प्रतीत भी जांदी रहिंदी है ते सजादा भी पागी होंदा है। इसलिए पाप दी खट्टी

या शाफ़े महशर, कभी आप मेरी तरफ मुतवज्जे हों, मुझ मिस्कीन और नादार की तरफ नज़रे इल्तिमास फरमाएं। मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मैं आपकी नालैन पाक के नक्श पर अपनी जान फिदा कर दूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि।

मेरे पर मौजूद है और रोज़े हश्र मेरे गुनाहों की गवाही देगी। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम शर्मिंदा हूँ। ऐ मौला सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम शर्मिंदा हूँ। और ऐ सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि

सरशार हैं, और इस जंजीर में जो मोहब्बत की जंजीर है आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, हमारे दिल बंधे हुए हैं और हम आपकी बारगाह में नम आंखों से सुखन अंदाज हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह,

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: तैनू मैं नहीं छड़ांगा किसी की धी भैन ते अख रखण वाला दुनिया दे विच पापी समझा जांदा बच जा जे बच हुंदा सुच्चे तों आहा

और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: अफसेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: सनराइज म्यूजिक,
5: इट्स अ क्लासिक हिट। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक, एज वी गो डाउन मेमोरी लेन। वेयर वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस?

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में आपको सुनाई देता है और डीएबी पे ब्रेडफोर्ड कीतली इल्कली स्किम्पटन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अक्रिंगटन मिल्टन कीन्स और बहुत जल्द आप डाबी में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं और अगर ऑनलाइन सुनना चाहें तो www.sunriseradio.fm पर आप सुन सकते हैं। और आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे।

तो दोस्तों हम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरा और आपका साथ जो है वो रहेगा जनाब ठीक 2 बजे तक। अब से लेकर एक बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी, आपके लिए प्यारे प्यारे गीत होंगे और एक और दो के दरमियान आप जनाब सुन पाएंगे लाइव कॉल्स में हमारे दोस्तों को जो अपने अंदाज में अपनी लिखी हुई या किसी और शायर की लिखी हुई शायरी आपसे शेयर करेंगे या फिर अपनी सुरीली मीठी आवाजों में आपके लिए गीत गुनगुनाएंगे। अगर आप भी शायरी का शौक रखते हो या गीत गुनगुनाने का शौक रखते हो तो जरूर आइएगा एक और दो के दरमियान। तो दोस्तों अब वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और वो प्यारा सा गीत मेरी जानिब से आप सभी दोस्तों के नाम होगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। दोस्तों उम्मीद रखते हैं आप सभी ने पसंद किया होगा। और हमें फ़ोन किया वाजिद भाई हडर्सफील्ड से, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करूंगा। और उसके बाद हीरा खान साहब, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम भी करेंगे। और उसके बाद जहूर साहब मोर टाउन लीड से, आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का, प्रोग्राम सुनने का, और आने वाला गीत आपके नाम भी करूँगा। और उसके बाद तारिक भाई BD8 से, आपने फ़ोन किया, आप कुमार सानू के फ़ैन हैं, थोड़ी देर के बाद कुमार सानू का ज़रूर कोई गीत लगाऊंगा। फिलहाल आने वाले गीत से लुत्फ उठाइएगा, अच्छा गीत है, उम्मीद रखता हूँ तारिक भाई आप उसे पसंद करेंगे। और इसी गीत को गुलाम भाई आपके नाम करेंगे, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे, साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ें साधना सरगम और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए इंजॉय कीजिएगा।

सदाबहार पुराना गीत होगा जनाब, और पुराना गीत जो होगा आप सभी दोस्तों के नाम होगा जो इस वक्त सनलाइट रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो जनाब स्पेशली हीरा खान साहब आपके नाम होगा, और नदीम मंसूर साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी होगा, और तारिक भाई बी डी एड से आपके नाम, जहूर साहब मोट ऑनलीड से आपके नाम, और वाजिद भाई अडसवीर से आपके नाम, और जनाब तारिक जुल्फी साहब, और इसी पुराने गीत को नज़र करना चाहूँगा जनाब गुलाम भाई आपके नाम, और सफीउल्ला भाई, और जनाब इस वक्त जो दोस्त सुन रहे हैं सबकी नज़र करेंगे। प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। कोशिश होती है आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत जो हैं वो पेश किए जाएं। तो अब सोच में पड़ा हुआ हूँ कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करूँ, क्योंकि कमर्शियल इतनी छोटी है कि उसके दौरान मैं कोई गीत ढूँढना चाहूँ तो मैं ढूँढ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतनी छोटी कमर्शियल है उसके दौरान कम से कम थोड़ी देर होती तो बंदा कोई अच्छा सा गीत इतने में माइंड बना के जो है वो प्ले कर सकता है, लेकिन कमर्शियल इतनी छोटी डाली उसने पता नहीं क्यों, जिससे चलिए कोई ऐसा रफ़ी साहब का कोई गीत प्ले कर देते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी और रफी साहब की आवाजों में मस्ती भरा गीत सुना और अब थोड़ा सा सोच में पड़े हुए थे कि कौन सा गीत प्ले करें और कौन सा ना प्ले करें, क्योंकि इस आवर का ये आखिरी गीत होगा, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि कौन सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करूँ जिसमें आप जो हैं वो उसको पसंद करें। तो मैंने ये गीत अभी चुन लिया है, उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी जो हैं इस गीत को पसंद करेंगे। तो चलेंगे दोस्तों, सुनेंगे आशा भोसले और जनाब कुमार सानू की आवाज़ों में, क्योंकि दूसरे अपने तारिक भाई BD8 से वो जनाब अपने जो है ना कुमार सानू के गाने बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई कुमार सानू का गाना हो जो है वो उनके नाम करें। तो सभी दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं आशा भोसले और जनाब कुमार सानू को। तो इंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनलाइट रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं और यही हिस्सा जो है ये जनाब डेडिकेशन का है। और क्योंकि जब प्रोग्राम के आखिरी आवर में आएंगे यानी कि एक और दो के दरमियान, तो फिर लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो आप दोस्तों के लिए ऑन एयर लाइनें खुली होंगी, उसमें कोई डेडिकेशन नहीं होगी। अगर कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो इस आवर में आप फोन कर सकते हैं। नंबर होगा 01274306666। तो दोस्तों अभी आप हमें काफ़ी शहरों में सुन सकते हैं और बहुत जल्द जो कुछ शहर बचते हैं वो भी ज़रूर आप सुनेंगे, उन्हें भी कोशिश लगे हुए हैं। फिलहाल तो आप 100.3 FM 2 पे और 100.6 FM पे आप वेस्ट योर्कशायर पे सुन सकते हैं और DAB पे आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्ले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स इस वक्त आप सुन सकते हैं। और बहुत जल्द यानी कि अगले महीने के मिडल में मेरे ख्याल में आप डर्बी में भी आप हमें सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे भी सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन सुनना चाहें तो www.sunriseradio.radio sunriseradio.fm पर आप हमें सुन सकते हैं। तो जनाब चलते हैं, आपको एक प्यारी सी चीज़ सुनाते हैं जनाब, बड़ी मज़े की चीज़ है और बताता नहीं हूँ, जब आप सुनेंगे आपको पता चलेगा। और बड़ी प्यारी चीज़ है जनाब, ये जबी गज़ल है, आप जबी सुनते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून आता है, बड़ी प्यारी शायरी है इसमें। और जनाब ये इमरान भाई, आपने फ़ोन किया था खबरों से पहले, आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ अब्दुल करीम साफ राइजिंग हॉल वाले उनके नाम करेंगे और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी मनीष साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। वैसे भी हम आपके लिए गाने लगाते रहते हैं, आप ज़रूरी नहीं है, मुझे पता आप बिज़ी होते हैं, आप सुन रहे होते हैं, आप जब मिस कॉल देते हैं तो अच्छा लगता है, तो जनाब आपके नाम भी करते हैं। और हीरा खान साहब, नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे, तारिक भाई बीडीएड से आपके नाम भी करेंगे और ज़हूर साहब मोटाउन से आपके नाम भी करेंगे, वाजिद भाई आपके नाम भी करेंगे, हीरा साहब, तारिक जुल्फी साहब और जनाब अमजद हकीम भट्टी साहब और ग़ुलाम भाई, सफ़ीउल्लाह भाई और दीगर सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। बड़ी प्यारी चीज़, आप सभी दोस्तों के लिए इन्जॉय कीजिएगा।
1: Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 0-1274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी गजल सुनी, पंकज उदास की प्यारी सी सदाबहार गजल। उम्मीद रखता हूँ सभी दोस्तों ने पसंद की होगी। तारिक जुल्फी साहब, आपको अच्छी लगी, शुक्रिया। आपके नाम की थी मैंने, और हीरा साहब आपको भी बहुत अच्छी लगी, आपके नाम भी की थी जनाब। अब वक्त हमें बता रहा है कि चलिए टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:17, यानी कि 17:12। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक बहुत ही प्यारा सा गीत होगा प्यारे दोस्तों के लिए। तो जनाब हीरा खान साहब, तारिक जुल्फी साहब, चौधरी मनीर साहब, चक्की वाले इमरान भाई और अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल से, ग़ुलाम भाई आपके स्टाफ के नाम करते हैं, नदीम मंसूर साहब, तारिक भाई BDH से, और दीगर जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, प्यारी बहना सादिया जी, हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे, साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब। इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं, नजमा हैं, इफ़त हैं, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे, और सभी दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दो प्यार भरी आवाज़ें होंगी, कुमार सानू और जनाब आशा भोसले की। तो आप सभी सुनने वाले उम्मीद रखते हैं इसको पसंद करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: 24 hours a day, 103.2. This is Sunrise Radio.
3: Got the greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
4: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम, इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 3010 ब्रेडफोर्ड, 7230 3010 3010.
6: Looking for your dream home in Bradford?
7: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
6: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
7: Bellevue Residences.
6: Luxury, space and style.
7: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बलमा फिल्म से लिया हुआ गीत आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में आपने ये प्यारा सा गीत सुना। तो दोस्तों, इसके साथ ही अब वक्त हमें बता रहा है कि वक्त जो है वो कमर्शियल का हो चुका है। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करूँगा। और तारिक जुल्फी साहब, आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। बोलते हैं कोई दोस्ती वाला गीत यार होना चाहिए आपके सभी दोस्तों के नाम, और स्पेशली जनाब मलिक इसहाक साहब जो हैं उनके नाम आप गीत करवाना चाहते हैं। तो दोस्त तो ताज जुल्फी साहब, कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपकी जानिब से आपके दोस्तों के नाम, स्पेशली मलिक इसहाक साहब के नाम होगा। तो जनाब आपके साथ साथ इसी गीत को मुना जी आपके नाम भी करेंगे, और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे, और इसी गीत को मलिक इम्तियाज़ साहब, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर, इफराज आपके नाम भी करेंगे। और जनाब जो तीन शहजादे बाबर शाह पे काम करते हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद सुनेंगे गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Sunrise Radio, Sunrise.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन, दफन, फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
5: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
4: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
5: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और स्पेशली ये गीत पेश किया था जनाब अपने तारिक जुल्फी साहब, आपकी जन्म से आपके दोस्तों के नाम और मलिक इसहाक साहब के नाम ये गीत किया था। और गुलाम भाई, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आने वाला गीत आपके नाम करते हैं, आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम करते हैं। चौधरी मुजफ्फर साहब, आपने अपने दोस्तों की लिस्ट भेजी है, थोड़ी देर के बाद ज़रूर वो लिस्ट जो है वो मैं देखूंगा और आपके दोस्तों के नाम ज़रूर गीत करूंगा। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा और इसी गीत को चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले आपके नाम भी करेंगे, नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे और जनाब दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, प्यारी बहना सादिया जी, आजरा जी आपके नाम भी, अमरीन साहिबा आपके नाम भी और शाहीन बहना आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: थी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, तो कमर्शियल की जानिब बढ़ेंगे जनाब और टाइम चेक करेंगे पहले।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त जो टाइम हुआ है वो हुआ है 12:45, यानी कि 12:45। तो चलेंगे अब सुनेंगे सदाबहार पुराना गीत और उसके साथ साथ जनाब ये पुराना गीत जो है ये नज़र करना चाहेंगे हमारे जनाब जितने भी दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरात को सुन रहे हैं। और चलिए कोई थोड़ा सा मस्ती भरा गीत भी प्ले कर देते हैं। और ये गीत हमें फ़ोन किया जनाब BD8 से तारिक भाई, आपने शुक्रिया फ़ोन करने का, और महमूद भाई आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, आपके नाम भी होगा चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी होगा और आपके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब गुलाम भाई आपकी, सफ़ीउल्ला भाई और दीगर जो दोस्त इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, और तारिक भाई और भी हैं, एक वो भी फ़ोन कर रहे हैं, उनके नाम भी करेंगे और उसके साथ साथ इसी गीत को नज़र करना चाहेंगे जनाब अमजद हकीम भट्टी साहब आपके नाम, और तारिक जुल्फी साहब, हीरा साहब आपके नाम भी करेंगे, और चौधरी मनीर साहब चक्की वाले हैं उनके नाम भी करेंगे, और उसके बाद जनाब जो हमारे जो अपने इस वक्त शहज़ादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं बिशारत अली सिकंदर अली, उनके नाम भी करेंगे और जितने दीगर दोस्त सुन रहे हैं सब के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
4: We love Sunrise Radio.
5: The greatest station, radio station in the world.
6: Sunrise Radio.
7: Looking for your dream home in Bradford?
8: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
7: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
8: Bellevue Residences.
7: Luxury, space and style.
8: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
9: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
10: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. sunriseradiogold.com.
9: It's a classic hit flashback. Flashback as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब चलेंगे अगले गीत की जानिब। और चौधरी मुजफ्फर साहब आपके दोस्तों के नाम करते हैं, चौधरी फरियाद साहब के नाम, चौधरी आसिफ रियासत के नाम, जनाब महबूब इलाही साहब, तारिक जुल्फी साहब, जावेद मीर भाई, तारिक भट्ट साहब, शकील भाई भरने वाले, हीरा साहब, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, और जनाब चौधरी उस्मान, सफ़ीउल्ला, वाजिद भाई ओडसवील से, अयूब चौहान साहब और शरफद्दीन साहब, पापा ख्वाजा शफीक साहब, सलीम साहब, अतीका साहिबा और जंगीर साहब ड्यूसबरी वाले, उनके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम भी। और दोस्तों मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम ये गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों अभी जो है वो प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। और ये आवर जो होता है ये लाइव कॉल्स का होता है, इसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब, तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, उसके बाद दोस्तों इन दोस्तों से मिलते हैं।
1: Of the hour brought to you in association with National Property Lawyers, one trusted team for your property and legal needs. Call 01274 559 565.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:10, यानी कि 10:01। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइव कॉल का सिलसिला होगा जनाब। अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं या कोई गीत या शायरी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। नंबर होगा 01274306666। इसके रास्ते आइएगा और प्रोग्राम में शामिल होइएगा। और हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनाब नदीम मंसूर साहब, इस वक्त काम पे भी हैं और ब्रेक टाइम पे वो आए हैं। तो उनको तालियों की गूंज में खुश आमदीद, वेलकम जी अनु कहेंगे, सत बिस्मिल्ला कहेंगे। जनाब नदीम मंसूर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: कैसे हैं जनाब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: काम में ज्यादा मसरूफ?
2: ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलता है?
2: चलता है।
0: चलता है। तो आज क्या लेकर आए हैं जनाब?
2: अच्छा, ये एक गीत है मोहम्मद रफी महमूद साहब की आवाज में, है फर्स्ट सफा प्यार का तुम क्या जानो।
0: ओहो, क्या बात है, क्या बात है जनाब इस गीत की।
2: जी बिल्कुल
0: जी।
2: ये कोशिश करता हूँ अब्दुल भाई के लिए और खुशवास साहब के साथ के लिए।
0: ठीक जनाब।
2: फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार

कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको।

कर जिंदा प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है फलसफा।

तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार न किया, तुमने इंतजार न किया, फलसफा।

जी दोस्तों, अभी ये गीत आप सुन रहे हैं रफी साहब का, और ये गीत जनाब नदीम मंसूर साहब ने गुनगुनाया था। और दोस्तों जल्दी में चलते हैं, ये गीत और सुनते हैं, आप दोस्तों के नाम करते हैं, इंजॉय कीजिएगा।

0: गवा रन की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे हम तो बस इतना ही कहेंगे आंदा कोई नहीं वारिस उजड़े आंदा आंदा कोई नहीं वारिस उजड़े आंदा ऐसा भूल जावे दिल लाके बसा चार दिहाड़े कड्ढे नी असा वेखे नी कई अजमा के कड के गर्जा मुड़ खबर नी लेंदे भूल वेंदे नी कसमा चाके असा खान जग अजमा छड़े आए ओके देंदे नी यार बना के इसी के साथ ही दोस्तों अब यहीं रुकता है सभी सिलसिला क्योंकि वक्त जो है हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है तो चलेंगे सुनेंगे जोहर की अजान उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने आज़ोर की अजान सुनी और इसके साथ ही जनाब टाइम चेक करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि 1:46 यानी कि 1:46। तो दोस्तों चलते हैं आपको कमर्शियल पे जाने से पहले और एक गीत सुनने से पहले हम आपको एक पंजाबी की चीज़ सुनाते हैं जो आपको यकीनन अच्छी लगेगी। जद रात नू सारे सौंदे ने, जद रात नू सारे सौंदे ने, दो नैन नमाने रोंदे ने, कोई मिलदी राह नहीं निकलन दी, गम चार चौफेरे होंदे ने, मैनू समझ के पागल वेखन लई कई लोग आन खलोंदे ने, जिहड़े प्यार किसे दे नाल करदे ने ओ हंजुआं दा हार परोंदे ने, जद मुक जान अथरू अखियां विचों फिर कतरे खून दे आंदे ने, जेड़े तोड़ निभान दा कहंदे सन अज वेख के भूए टोंदे ने, प्यार सजना जिन्ना दा खालस होवे, प्यार सजना जिन्ना दा खालस होवे ओ कदी नहीं किसे होर दे होंदे ने, जद रात नू सारे सौंदे ने दो नैन नमाने रोंदे ने। तो दोस्तों चलते हैं, छोटी सी कमर्शियल है वो सुनते हैं, उसके बाद आप सुनेंगे मेहदी हसन की आवाज़ में एक प्यारा सा गीत, वो सभी दोस्तों की नज़र करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274

0: the classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
1: जी दोस्तों, गीत तो मैंने सुनाना था मेहदी हसन की आवाज़ में, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब चौधरी रुखसार अहमद साहब मानचेस्टर से। उन्हें सुन लेते हैं, फिर मैं आपको वो ज़रूर गज़ल सुनाऊंगा मेहदी हसन की। तो तालियों की गूंज में क्या हुआ जनाब, चले गए? ये बहुत होता है, ऐसा होता है कभी कभी। तो तालियों की गूंज में हम कहने ही वाले थे चौधरी रुखसार साहब को खुश आमदीद वेलकम, तो वो शायद किसी वजह से उनकी लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, हम आपको मेहदी हसन की वो परसोज गज़ल जो है वो आपको सुनाते हैं।

जी दोस्तों साथियों, अभी आपने मेहदी हसन की आवाज में परसोज गजल सुनी। उम्मीद रखते हैं सभी ने एंजॉय की होगी, बड़ी प्यारी शायरी थी। और इसी के साथ ही दोस्तों, मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। उम्मीद रखते हैं आज का प्रोग्राम आप साथियों को पसंद आया होगा। अगर अल्लाह ने चाहा और जिंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:25 पे होगी। तब तक के लिए मुझे आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड गुड बाय।

हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो 103.2 एफएम ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में। इसके साथ साथ अगर आप हमें दुनिया के किसी और हिस्से में सुन रहे हैं तो उसके मुताबिक हम आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अगर आप इंडिया में सुन रहे हैं तो आपको हम कहेंगे आपका स्वागत करते हैं हम स्वागत। इसके साथ साथ पाकिस्तान में सुन रहे हैं तो आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन इंग्लिस्तान में तो आप सुन ही रहे हैं। मतलब आप इंग्लिस्तान में अगर हैं और हमारा रेडियो स्टेशन सनराइज रेडियो नहीं सुन रहे तो फिर और क्या सुन रहे हैं? घर वालों की बातें सुन रहे हैं या अपनी वाइफ की बातें सुन रहे हैं या वाइफ अपने हस्बैंड की बातें सुन रही हैं? बहरहाल आप सारी बातों को एक साइड पर रख दीजिए और सुनिए सनराइज रेडियो 103.2 FM, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके साथ साथ अगर आप हमें इंग्लैंड में सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, आपके शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, आपका दिन रात कैसा, दिन रात एक किया हुआ है या दिन और रात अलग अलग से हैं? कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर इतनी मेहनत करते हैं कि उनका दिन और रात का पता ही नहीं चलता। वो या तो रात को काम कर रहे होते हैं तो दिन को घर वापस जा रहे होते हैं, और अगर दिन में काम कर रहे होते हैं तो रात को घर वापस जा रहे होते हैं। बहरहाल आप किस कैटेगरी से हैं, कि आपका ताल्लुक किस कैटेगरी से है ये हमें ज़रूर बताएगा। स्टूडियो का नंबर हमेशा की तरह आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। आप हमें अपने टेलीविज़न पर भी सुन सकते हैं, आप हमें रेडियो प्लेयर पर सुन सकते हैं, ऑनलाइन ऑफकोर्स सुन सकते हैं sunriseradio.fm पर, और इसके साथ साथ आप अपने Amazon Kindle Fire पे भी सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका हमारे साथ रहेगा आपसे लेकर तकरीबन 3 घंटे। नेक्स्ट आइंदा जो 3 घंटे हैं हमारा आपका साथ रहेगा, और तकरीबन मैंने इसलिए कहा है कि इंसान है, आगे पीछे हो सकते हैं हम, मतलब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ब्रैडफोर्ड और इसके गिर्दोनवा में साथ साथ जो हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले हमें मैनचेस्टर में सुन रहे हैं तो आप हमें DAB के ज़रिए सुन रहे हैं, और लीड्स में भी DAB के ज़रिए सुन रहे हैं। इसके साथ साथ ओल्डम, रॉसडेल, ईस्ट लंकशायर और मिल्टन किंग्स, वाओ, मिल्टन किंग्स में आप हमें सुन पा रहे हैं DAB डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हम सिर्फ 24 घंटे नहीं, साल के 365 दिन नहीं, बल्कि हमारा और आपका साथ उम्र भर का है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

ओके सो बात यह है कि गाने तो हम सुनते रहते हैं, इसके साथ साथ हम मूवीज भी देखते रहते हैं, मूवीज के साथ साथ हम ड्रामे भी देखते रहते हैं। मतलब क्या क्या इंसान देखे, सारा दिन मोबाइल भी देखते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आप रेडियो सुनते हैं तो रेडियो तो हम करते हैं बातें, बातें सुनने के लिए हम रेडियो ऑन करते हैं। बाज़ औक़ात हम बहुत बोर हो रहे होते हैं तो हम कहते हैं यार रेडियो पे क्या चल रहा है, या तो खबरें या तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आपको हर घंटे के बाद जो हमारा ख़बरनामा मिलता है उसमें आपको खबरें मिलती हैं, ट्रैफिक की अपडेट मिलती हैं, जिससे आप बाखबर रहते हैं कि दुनिया में और आपके इर्द गिर्द, आपके शहर में, आपके इलाके में क्या क्या हो रहा है। इससे सनराइज़ आपको अपडेट रखता है। इसके साथ साथ आपको गाने तो हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ हमारे शो में आज नहीं होने वाली है, वो ये है कि फरमाइशी गाने मैं को नहीं चलाने। अगर आप फरमाइश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिएगा, लेकिन आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। आप कभी भी हमसे बात करें, और बात करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, और हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274306666, यानी कि 4 दफ़ा 6, मतलब 01274306666। आप हमें स्टूडियो में अभी कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि व्हाट आर यू अप टू।

मुझे याद है कि एक जमाना हुआ करता था कि जब बड़ा मायूब समझा जाता था कि कोई हमें फॉलो कर रहा है, कोई आपका ताकुब कर रहा है। आजकल हर दूसरा बंदा दूसरे बंदे को यही कहता है कि आप मुझे फॉलो करें। आजकल हम खुद किसी को दावत दे रहे होते हैं कि भाई हमें फॉलो करें, मतलब मैं जहां जहां भी जाऊं, मैं जो कुछ भी करूं, मैं जो कुछ भी खाऊं, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। मतलब आजकल की जिंदगी इस तरह की हो चुकी है। बहरहाल आप भी हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और इसके साथ साथ हमेशा की तरह आप हमें सुन पा रहे हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू भी, sunriseradio.fm।

राइट जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल करें 01274306666 पर। अच्छा, ये हमारा एक कह लीजिए कि ये देसियों का एक मामला है कि हम लोग ईमेल्स और टेक्स्ट वगैरह पर बहुत कम यकीन रखते हैं। हम अगर ईमेल कर भी दें किसी को गलती से, या फिर उनको हम मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज, एक तो ये धड़का सा लगा रहता है कि टेक्स्ट मैसेज अगर आपने किया है तो वो सीन हो गया है या नहीं सीन हुआ। अगर सीन हो गया है तो वो बंदा रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ ईमेल्स पे तो खैर ये तरीका नहीं है कि आप चेक कर सकें कि किसी ने आपकी ईमेल पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली। बहरहाल होता यह है कि हम लोग ईमेल्स पे और टेक्स्ट पर, ये इन चीज़ों पे बहुत कम बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी को ईमेल किया तो वो ईमेल कहीं पर गुआस गई है, मतलब कहीं पे खो गई है, उसका कोई नामो निशान नहीं है कि अगले बंदे को पहुंच गई है या उसको रिस्पॉन्ड करने में कितना वक्त लगेगा। लिहाजा हम बिलीव करते हैं फ़ोन कॉल्स पर। हम कहते हैं कि यार फ़ोन करो यार, क्या है यार, मतलब इसमें से पहले चेक करो, मतलब डायरेक्ट बात जब तक बंदे से ना हो हमें तसल्ली नहीं होती। तो बहरहाल आप अपनी तसल्ली रखिए और हमें कॉल कीजिए 01274306666 पर। आपकी फरमाइशें बहरहाल हम नहीं ले रहे, लेकिन अगर आपकी कोई ये फरमाइश है कि आपने मेरे थ्रू किसी को आई लव यू कहना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और उनका नाम बता सकते हैं। मैं आपका जो पैगाम है, मोहब्बतों भरा पैगाम, वो पूरी ईमानदारी से थर्ड पार्टी तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।

राइट, आपकी कॉल्स का बेहद बेहद बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। लाइंस बहुत बिजी, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पा रही तो उसके लिए मैं बहुत बहुत बहुत माजरा चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज जो आपकी कॉल्स आ रही हैं वो इतनी भरपूर आ रही हैं कि उसमें मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। यकीन कीजिए, ये जो एक शो करना है ना, ये जो एक रेडियो का शो करना है, ये ऐसा है कि जैसे आप जहाज़ चला रहे हैं। मतलब आपको हर चीज़ के ऊपर, आप इतने सारे बटन्स आपके सामने होते हैं, आपको हर बटन के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि अच्छा कोई बटन आगे पीछे ना हो जाए, किसी टाइमिंग गलत ना हो जाए। तो बहरहाल आपकी कॉल्स का शुक्रिया। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी कॉल्स सबकी जो हैं वो मैं रिसीव करूंगा और आपसे बात भी होगी। अगर आपको दोबारा डायल करना पड़ रहा है तो उसके लिए माजरत, और अगर आप दोबारा डायल करते करते नहीं थक रहे तो आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

सियाने कहते हैं कि आपकी जो नेटवर्थ होती है, किसी भी इंसान की जो नेटवर्थ होती है, वो अक्सर देखा जाता है ना कि किसी की क्या वर्थ है, वर्थ से मुराद जो नेटवर्थ है कि उसके पास पैसे कितने हैं, वो कितना अमीर है, उसका बैंक बैलेंस क्या है। सियाने कहते हैं कि किसी भी इंसान का जो बैंक बैलेंस होता है, जो नेटवर्थ जिसकी होती है, वो उसका नेटवर्क होता है। जिस तरह आपका नेटवर्क सनराइज रेडियो है, ये आपका फैमिली नेटवर्क है, और जो हमारा नेटवर्क है वो आप हैं। हमारा तो बैंक बैलेंस यही है, हमारा जो ख़जाना है वो आपकी मोहब्बतें हैं, और जो आपका ख़जाना है वो सनराइज रेडियो है, जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं, और जिसमें हमारी जो मोबाइल ऐप है वो शामिल है, और इस ऐप के थ्रू आप हमें डायरेक्ट सुन सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि थर्ड मैन या थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका और हमारा डायरेक्ट राबते का एक सोर्स है, जिसके थ्रू आप से हम कलाम होते हैं और हम आपसे हम कलाम होते हैं। हम कलाम होने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया से के थ्रू हमें रबता हमसे रबता कर सकते हैं, और sunriseradio.fm हमारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको हमारे सोशल्स के तमाम लिंक्स मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

बहुत से दिल जले हमें सुन रहे हैं और उन दिल जलों की ये फरमाइश है, ये तमन्ना है, ये चाहत है कि एक कोई दुखी किस्म की शायरी प्रोग्राम में शामिल की जाए। लेकिन एक बात मैं हमेशा से इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जब इंसान कोई दुखी होता है ना, उसको दुखी शायरी, दुखी गाने, दुखी बातें और दुख पहुँचाने वाले जो लोग हैं उनसे मज़ीद थोड़ा सा किनारा कशी कर लेनी चाहिए। दुखी शायरी या दुखी गाने आप इसी सूरत में सुनना चाहते हैं कि आप दुखी हैं या किसी की याद आपको सता रही है, तो मैं आपसे माजरा चाहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी दुखी हैं तो मैं आपको कोई दुखी शायरी सुना के, दुखी गाने सुनाकर मज़ीद दुखी नहीं करना चाहता। तो बेहतर यह है कि अगर आप ने दुख फोलने ही हैं, अपने खरोलने ही हैं, या उन दुखों को आपने दोबारा से ज़िंदा करना है या उनको ताज़ा करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको उसका एक बेहतरीन किस्म का उपाय बताऊंगा कि आपको जो दुख लाहक हैं उनसे आप छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर तो आपको पता ही है, 01274306666। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

आज जी कहते हैं कि मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, मोहब्बत की सिर्फ एक जुबान होती है, और वो जुबान होती है कि किसी भी जुबान में अगर आप मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसको प्यार से बोला जाए तो वही मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत की जुबान वही होती है जो आपकी मादरी जुबान होती है। अगर आप अपनी मादरी जुबान से प्यार नहीं करते तो आप प्यार कैसे कर सकते हैं? तो आपकी मादरी जुबान चाहे पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है, उसके अलावा पहाड़ी है, पोटोहारी है, या पश्तो है, या किसी भी किस्म की आपकी ज़ुबान है, अगर आप वो ज़ुबान बोलने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप शायद मोहब्बत करने में भी किसी हद तक कंफर्टेबल ना हों। मोहब्बत तो हमेशा अपनी ही ज़ुबान में उसका मज़ा आता है, और चाहे वो मोहब्बत हो चाहे वो लड़ाई हो, जब इंसान लड़ाई भी करता है, गुस्से की हालत में भी होता है, तो वो अपनी मादरी ज़ुबान में ही लड़ाई करता है, तो उसको अजीब सी तस्कीन मिलती है कि शायद ये सही तरीका है लड़ाई करने का। मतलब हम लोग जो अपने अपने वतनों से यहाँ पर आकर आबाद हैं, अपनी अपनी ज़ुबानें बोलते हैं, जब हम लड़ाई करने की कह लीजिए स्टेज पर आते हैं, किसी से लड़ाई करना चाहते हैं या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती जब तक हम अपनी ज़ुबान में उससे आर्ग्यूमेंट ना कर लें या उनसे हम लड़ाई ना कर लें, उनसे गिला ना कर लें। ये जो अंग्रेज़ी ज़ुबान है, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बोलते हैं वो अपनी ज़ुबान में लड़ाई करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। बहरहाल ज़ुबानें सारी अच्छी हैं, और जो भी ज़ुबान मोहब्बत और प्यार से बोली जाए वो सारी अच्छी ज़ुबानें हैं, सारी हमारी ज़ुबानें हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने किस ज़ुबान से हमसे बात करनी है, आप कोई भी ज़ुबान इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि उसमें मोहब्बत ज़रूर शामिल कीजिएगा। स्टूडियो का नंबर है 01274306666। आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज़ रेडियो।

का एक दिन बन जाता है। तो इसी तरह जब आप किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड आपके ऊपर एक पहाड़ जैसा बोझ लेकर आता है। आपको लगता है कि ये वक्त गुजर क्यों नहीं रहा। अभी हमारे शो को भी देखें, आपके साथ साथ चलते चलते हमारा वक्त कितना अच्छा और खुशगवार गुजर रहा है कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वक्त भी गुजर जाएगा, आप भी जहां पर जा रहे हैं, जहां जाना चाहते हैं, आप भी गुजरते गुजरते वहां पहुंच जाएंगे और हम भी आपसे बात करते करते इस शो को अलविदा कहकर फिर अगले शो की इजाज़त लेकर आपसे हम अलविदा हो जाएंगे, आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी तो वक्त है, अभी आपने जाना कहीं नहीं है, क्योंकि आपने रहना है हमारे साथ साथ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हैं आपके साथ साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बरतानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

अच्छा जी, आपकी कॉल्स का बेहद शुक्रिया। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं शायद जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाता हूं। तो भाई आई विश के मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको दिखा देता कि स्टूडियो के अंदर जो ये जो लाइंस फ्लैश कर रही हैं टम टम टम टिका टिका टिका टम टम टम, ये मैं आपको दिखा सकता लाइव। लेकिन वो भी दिखा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन देखिए, चूँकि कॉल्स की जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए और जिससे भी बात होती है वो भरपूर बात हो रही होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर बात हो, क्योंकि हम भी यहाँ हैं और आप भी यहाँ हैं। हम ना ही हमारा ये आखिरी शो है और ना ही आपकी आखिरी कॉल है। हम बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे और म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसके साथ साथ मशहूरियाँ भी सुनेंगे। देखिए, ये जो मशहूरियाँ होती हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। गाने तो सारे लोग एक दूसरे को डेडिकेट करते हैं, लेकिन मैं आप सबको, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको आज मशहूरियाँ डेडिकेट करूँगा। जितने भी एड्स हैं ये मैं आपको डेडिकेट करूँगा। मैं कहूँगा ज़रा इनको गौर से सुने और सुने कि ये क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आप की कॉल नहीं मिल रही तो मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। वो मशवरा मुफ्त है और मुफ्त मशवरा देने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे तो आप मुझे नहीं देंगे और ना ही किसी और किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक छोटा सा काम करेंगे कि मैं आपको थोड़ी देर बाद वो मशवरा बताऊंगा, और मशवरा बहुत फ्री में है, ये जहन में रखिएगा। उसका कोई नुस्खा नहीं है, उसका मतलब कोई उसकी कीमत नहीं है। वो मशवरा मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा काम करना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं 01274306666 पर। अगर आपकी इस नंबर पर कॉल नहीं मिल रही तो मेरे पास एक बहुत मुफीद मशवरा है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

तो लीजिए हम आपको ये देते हैं मशवरा, और वो मशवरा ये है कि अगर आपकी कॉल नहीं मिल रही फॉर सम रीज़न, या मैं उठा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीज़न, वो रीज़न यही है कि कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और बंदा मैं कल्ला ही हूँ, इंसान मैं एक हूँ, और वो कहते हैं कि एक जिंदली तो दो हज़ारा, बंदा मैं अकेला हूँ और कॉल्स आप लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैं अकेला हूँ आपकी कॉल्स लेने वाला और मैं वन बाय वन ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात हो पाए। लेकिन अगर आपसे ये मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप एक काम कीजिएगा, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाइएगा। मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आप sunriseradio.fm पर जाइए और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इनमें से किसी एक के थ्रू भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट यूट्यूब, लेकिन आप बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, इन पर आप हमें डीएम कर सकते हैं और वहां पर भी आपसे हमारी बात हो पाएगी। तो ये एक बहुत मुफीद किस्म का मशवरा मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो एक तो मशवरा भी मुफ्त है और दूसरा ये काम भी मुफ्त है। मतलब इसमें आपको कॉल करने को पैसे नहीं लगेंगे, वैसे तो आजकल इतने लगते नहीं हैं, फ्री नेटवर्क है, मतलब कहीं भी आप कहीं भी लोकल नेटवर्क पर हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही फ्री है। आपने बैठकर मैसेज करना है और हमने पढ़ लेना है ऑन एयर आपका मैसेज, और आपके दिल की जो भड़ास है, भड़ास मुराद है कि जो आपकी चाहत है, वो जो डुल डुल के आ रही है हमारे पास, उसको हमने समेट कर अपने जो आपके अल्फाज हैं उनको आवाज़ देनी है और वापस आप तक पहुंचाने हैं और आपके चाहने वालों तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं बर्तानिया का नंबर वन हिट म्यूजिक स्टेशन सनराइज रेडियो। अगर आपको अभी तक मेरा नाम पता नहीं चला तो मैं आपको वो भी थोड़ी देर में बता देता हूँ। स्टे ट्यून्ड।

राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हुआ चाहता है प्रोग्राम का एहतिताम। ओके, यहाँ पर मुलाकात जो हमारी पिछले 3 घंटे से जारी थी वो अब उसका कह लीजिए कि एहतिताम हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अंटिल देन अपना बहुत सा ख्याल रखा कीजिए, अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का, अपने माँ बाप का। क्योंकि माँ बाप दुनिया में इंसान की 2 आंखों की तरह होते हैं। अगर एक आंख देखना बंद कर दे तो दूसरी आंख उसका काम देती है, लेकिन अगर दोनों आंखें देखना बंद कर दें तो इंसान की जिंदगी एक अंधेरा बन जाती है। उसको दिखाई कुछ नहीं देता, उसको सुनाई भी कुछ नहीं देता। अपनी आंखों की हिफाजत किया कीजिए, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों, रुफका और अपने अजीजों अकारब का ख्याल रखा कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Sunrise and music.
5: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you? When you fell.

0: राइट, दैट वाज द हिट ऑफ द आवर. आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का. लाइनें चमक रही हैं, दमक रही हैं, लाइंस आ गई क्वाइट बिजी. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का भी. और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक.
1: सनराइज रेडियो, your soundtrack, your time check.
0: All right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to the Sunday radio clock, it's 14 minutes past 8 in the UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in, keep it locked down with the Parviz Khan. Yahan pe chote se break ke break foran baad, I will mention you all your beautiful, flashing, beautiful names, jo yahan pe chamak rahe hain, dhamak rahe hain, aur hameri khush nasibi hai ke aap hamara saath de rahe hain. Bahut bahut shukriya aap sab ka bhi. Fardan fardan sab ka naam lunga, aur sab ke liye geet bhi honge. Bahut bahut shukriya aapka bhi.
2: My favourite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
4: We love Sunrise Radio.
5: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
6: Looking for your dream home in Bradford?
7: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
6: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
7: Bellevue Residences.
6: Luxury, space and style.
7: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM. बहुत शुक्रिया आप सबका भी हमारा साथ देने का. बहुत शुक्रिया. एंड डेफिनेटली यू लिसनिंग टू सनराइज रेडियो. और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ देने. थैंक यू. और लाइनें चमक रही हैं, दमक रही हैं. और थैंक यू वेरी मच. और डेफिनेटली हम मैंशन करेंगे सब दोस्तों का नाम यहाँ पे. और सबसे पहले कॉल आई हमारे गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान सुमित्रा जी, वेलकम जी. एन खुश आमदी दर्शक बिस्मिल्लाह कहूँगा. आपको भी वेलकम, आपने हमें याद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. देन वी हैड अ लवली कॉल फ्रॉम वाजिद भाई फ्रॉम होडिसफील से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. देन अब्दुल क्यूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. यासमीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ. नदीम मंसूर साहब हैं हमारा साथ दे रहे हैं. अतीका साहिबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने का. बहुत बहुत शुक्रिया. और थोड़ी देर के बाद सबका नाम लूंगा. और ये गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, यह गिदन भाई हैं, हमारे पापी जान हैं, उनके लिए गीत होगा. मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही नायाब गीत है, बड़ा ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माय फेवरेट गीत है. और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए पेश करूँ. बड़ा ही ज़बरदस्त गीत है, ज़बरदस्त गीत. एंड आई एम गोना प्ले दिस फॉर यू ऑन योर फैमिली, योर फ्रेंड, जो आपकी सखियाँ सहेलियाँ हैं उनके लिए गीत होगा. आपने इंजॉय करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच. ये वो गीत है, इंजॉय द ट्रैक.

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने का. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लवली कॉल एज वेल, बहुत अच्छा लगा. वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं होटिशफील आने वाला गीत में आपके लिए पेश करूंगा अब्दुल कयूम सरफराजिंग और से ये गीत आपके लिए हो गया. मुझे उम्मीद है, यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. बड़ा ही खूबसूरत गीत है, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून, और आप इस गीत में भी इंजॉय करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और नशीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और शाहपुरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. थैंक यू वेरी मच आपने कॉल किया. साइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. और फजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये गीत आपके लिए पेश करूंगा. सिमी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. ये गीत आपके लिए होगा, और स्पेशली अब्दुल कयूम साहब, ये गीत आपके लिए होगा. मुझे उम्मीद है, यकीन कि आप इंजॉय करें. बहुत ही खूबसूरत गीत है, और थोड़े से हट के गीत है. इंजॉय करें.

और आप आए और बहार आ गई और चौधरी रुखार भाई वेलकम जी एन खुश आमदीद। आने वाला गीत मैं आपके लिए भी पेश करूंगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करें, बड़ा ही अच्छा लगा, दिल गार्डन गार्डन दिल बाग बाग होगी कि आपने हमें याद कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और क्या वजह मेरे भाई, आप आ रहे और जा रहे और छा रहे, क्या कहने क्या कहने, आना जाना वाह जी वाह क्या कहने। और ये वो गीत है, इंजॉय करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: राइट, वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों जो मेरा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यू नो वा, बहुत अच्छा लगा चौधरी अख्तार भाई आपसे गुफ्तगू करके, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही खूबसूरत है। और कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, चख आ गई जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद करें और आपने हमारा हमारा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच। और फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का, हमेशा ही मुझे कहते हैं चैम्पियन। और क्या कहने, इनकी आवाज़ से इनकी जो गुफ्तगू होती है बड़ी खूबसूरत, बड़ी नियारी गुफ्तगू करते हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। एनीवे, यहाँ पे हमने गीत पेश करना है और आने वाला गीत आपके लिए भी होगा, और यही आने वाला गीत मैं पेश करूँगा। अतिकर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए होगा। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। और सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहुत अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। फ़ोन करने का, हौसला अफजाई करने का, आपको पूरी फैमिली को हम सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ देने, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो गीत जब पेश करने जा रहा आपके लिए चौधरी अख्तार भाई, आपके लिए भी अब्दुल कयूम साहब राइजिंग से, आपके लिए भी गिदन भाई हैं, आपके लिए भी, और हमारे वाजिद भाई हैं, आपके लिए भी अली भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमें अच्छा लगा कि हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारे मोहतरम हैं चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, उनके लिए और उनके दोस्तों के लिए हमेशा ही मुझे माशाल्लाह बहुत ही कहते हैं कि यार मेरी लिस्ट है यहाँ पर पढ़ लें, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा प्यार के साथ, बड़ी अदब के साथ, और बड़ा अच्छा लगता है। चौधरी आसिफ जैसी साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, परवेज़ खान हैं, महबूब लाई साहब हैं, तारिक जुल्फी साहब हैं, जवेद मीर साहब हैं, तारक भट्ट जी हैं, शकील साहब हैं, इरा खान हैं, आमिर शिदार साहब हैं, चौधरी अहमद उस्मान हैं, सफ़ीउल्लाह हैं, वाजिद भाई फ्रॉम होटी स्कूल से हैं, अयूब जवान साहब हैं, चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं, शरफुद्दीन हैं, और ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, और मोहम्मद सलीम साहब रफ़ी साहब हैं, अतीका साहब हैं, जंगीर फम जीत बरिश हैं, माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और हमें अच्छा लगा कि हमारा साथ देने। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप हमारा साथ दें, थैंक यू वेरी मच। और हमेशा ही जब भी मैं प्रोग्राम करता हूँ माशाल्लाह, तो इनकी माशाल्लाह खूबसूरत इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है हमारे चौधरी मुजफ्फर साहब, माशाल्लाह हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। और उनके लिए और चौधरी फरियाज साहब आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आने वाला गीत आपके लिए होगा और बहुत अच्छा लगा। फजाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, ये गीत आपके लिए होगा। इंजॉय द ट्रैक।

राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, ऑल दिस गोल्ड, और हमेशा मैं कहता हूँ और क्या की था जबरदस्त, दैट वाज अमेजिंग अमेजिंग ट्यून. मूविंग ऑन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्यून, और बहुत खूबसूरत है. रखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ देने, और ये गीत आपके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच वो जो हमारा साथ दे रहे हैं, और चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और ये वो गीत मैं जो पेश करने जा रहा हूँ, आई होप यू कैन एन्जॉय दिस वंडरफुल वंडरफुल ट्यून, वन ऑफ माई फेवरेट ट्यून, और ये वो गीत है, इन्जॉय.

0: राइट, दैट वाज अ वंडरफुल ट्यून, बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना और आपने एंजॉय भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और नदीम मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये गीत आपके लिए क्या, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेटी जी, ये क्या मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और क्यों हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं आज, क्यों, क्या वजह है, खाना नहीं खाया या पानी नहीं पिया, ये क्या वजह है मेरे भाई। आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ा ही अच्छा लगा। और काफ़ी दोस्तों की शादी भी हो रही है, और शादी मुबारकबाद ऑल दोज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कपल माशाल्लाह, ब्राइड एंड ग्रूम, उनको भी हम मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्या कहने जी, और खुशनसीबी है, और क्या कहने। और आज आपने हमें इनवाइट किया शादी पे, तो आपको पता है मैंने प्रोग्राम करना था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी और रोज़, कोई बात नहीं, अल्लाह आपको मेरा खुश रखे, शादाबाद रखे। और वाह जी वाह, क्या कहने। और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 44 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in and keep it locked on with the Parviz Khan. और ये वो गीत मैं पेश करने जा रहा हूँ, और नदीम मंसूर साहब, ये गीत मैं आपके लिए पेश करना, आप ही क्या याद करेंगे मेरे भाई, आपके लिए भी होगा और सब सुनने वालों के होगा, और अली भाई चौधरी फरियाज साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए होगा। मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे। और शाहपरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी जो सखियाँ सहेलियाँ हैं उनके लिए गीत होगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दिनों के बाद आपने हमें याद करने हैं। और ये वो गीत है जो मैंने पेश करना है आप दोस्तों के लिए, जो खामोशी के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर, जो सारे लिसनर हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ कि आपने हमें मौका दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और ये वो गीत है, और डॉक्टर मलिक साहब आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए, आई होप यू गन एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून, बहुत खूबसूरत गीत है, बड़े दिनों के बाद मैं गाना पेश कर रहा हूँ आप सबके लिए, मुझे उम्मीद है यकीन का इस गीत का आप इंजॉय करेंगे, बड़ा ही नायाब गीत है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक, एंजॉय।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है। अतिका साहब हैं ऑल द वे फ्रॉम मैनचेस्टर से, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाही व बरकातहू।
0: कैसे थे भैया? ठीक ठाक से? ठीक है आपकी?
1: सब आपकी दुआएं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह जी।
1: और आप कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र, करम करम करम मौला दे करम, माशाल्लाह
1: हमेशा करम ही रहना चाहिए सब पे
0: जी।
1: तो सबको सलाम करते हैं
0: जी। जी वालेकुम सलाम।
1: और आपकी ये सुरंगे महफिल के जितने भी सितारे और चांद हैं
0: जी जी,
1: सबको सलाम करते हैं।
0: वालेकुम।
1: और हमारी सखी सहेलियां हैं
0: जी जी,
1: तो उनको, और सबसे पहले तो ये जो सॉन्ग आज भी आपने लगाए हैं,
0: माशाल्लाह क्या कहने,
1: ये बस उसको नजर ना ला
0: नजर ना लग जाए, क्या कहने क्या कहने,
1: बहुत खूबसूरत, बहुत ही खुशी। सॉन्ग को फरमाइश करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
0: हाँ।
1: इतने खूबसूरत सॉन्ग होते हैं
0: जी।
1: तो आप भी चुन चुन के लगाते हैं, वो कुछ सॉन्ग तो इतने खूबसूरत थे जो कि वो देर बाद सुने हैं
0: जी,
1: लेकिन बहुत अच्छे सॉन्ग थे
0: जी।
1: तो आप हमेशा ही खूबसूरत सॉन्ग, आप जो इसकी इब्तदा करते हैं
0: जी जी,
1: खूबसूरत सॉन्ग के साथ, और बहुत अच्छा लगता है
0: जी।
1: और ये सब आपके आने से, और आपका ये शो जो आप रंगे महफिल करते हैं, उसकी महफिल में और चार चांद लगा देते हैं
0: जी। माशाल्लाह क्या कहने,
1: बहुत खूबसूरत महफिल होती है हमेशा ही
0: जी।
1: अल्लाह पाक हमेशा ऐसे रखे।
0: आमीन आमीन सुम आमीन।
1: तो सबसे पहले तो हमारी सखी सहेली है सुमित्रा जी हैं, गिदर भाई हैं
0: जी।
1: और सुमित्रा जी और गिदर भाई ने लास्ट टाइम जो सॉन्ग सुनाया था ना
0: जी,
1: बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत खूबसूरत,
1: बहुत खूबसूरत था
0: जी।
1: वो बड़ी बहुत देर बाद मैंने सुना था, लेकिन उन्होंने इतना खूबसूरत सॉन्ग सुनाया
0: जी,
1: और वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम रियल में जो सॉन्ग था वो सुन रहे
0: हैं।
1: बहुत शुक्रिया उनका, तो सुमित्रा जी का बहुत शुक्रिया, वो हमेशा खूबसूरत सॉन्ग सुनाती हैं और हम सबके नाम भी लेती हैं, और बहुत ही खूबसूरत महफिल सजती है जब सब आते हैं
0: जी।
1: सबका शुक्रिया
0: जी।
1: तो सुमित्रा जी हैं, गिदर भाई हैं, रेखा जी हैं, नुशीन जी हैं, शाहपुरी हैं, जुलेखा जी हैं, सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुखसाना अफजल हैं
0: जी,
1: और चौधरी फरियाज साहब हैं
0: जी।
1: वो उन्होंने भी आके रात को बहुत खूबसूरत अपना वो कलाम सुनाया था,
0: बहुत खूबसूरत, बहुत
1: प्यारा, वो हमेशा ही खूबसूरत जब भी सुनाते हैं एक से एक बढ़ के होता है
0: जी।
1: तो वो भी इंशाल्लाह आएंगे और फिर खूबसूरत अपनी महफिल जमाएंगे
0: जी।
1: तो जवेद मीर साहब हैं, नदीम मंसूर साहब हैं, उनका तो क्या कहने,
0: उनका देखिए नदीम मंसूर साहब से वो क्या कहने के, क्या कहने उनके, क्या कहने,
1: क्या कहने उनके लिए, तो जो तारीफ के लफ्ज भी कम पड़ जाते हैं।
0: हाँ, कमाल कमाल ही होती है, कमाल कमाल ही होती है, क्या कहने,
1: बहुत कमाल करते हैं,
0: कमाल ही करते हैं,
1: खुश रहें और हमेशा सलामत रहें। पापा जी हैं
0: जी,
1: पापा जी एंड में आए थे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ा सा सुनाया, लेकिन
0: बहुत खूबसूरत महफिल हुई है पिछले माशाल्लाह, और बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ी नायाब, और जो संडे का प्रोग्राम था बड़ा ही खूबसूरत,
1: बहुत
0: एक से बढ़कर एक कॉलर आए और सबने कमाल ही कर दिया, कमाल कमाल कर दिया, वाजी
1: कमाल ही, बस कमाल जी,
0: कमाल जी कहले मशहूर हो गए, कमाल छा गए, कमाल छा गए
1: जी, छा गए। शकील साहब आएंगे आज इंशाल्लाह,
0: उनको कमी महसूस हुई पिछले प्रोग्राम में, और आज जो ना वो माशाल्लाह आएंगे और माशाल्लाह जबरदस्त।
1: अच्छा वो भी आएंगे।
0: आप थोड़ा होल्ड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे कमरे जी कह रहे हैं कि आठ ब्रेक है, छोटी सी आठ ब्रेक है, निकी जी आठ ब्रेक है, तो आप थोड़े होल्ड कर लें, और इसके बाद हम दोबारा कनेक्ट करते हैं आपके साथ, और क्योंकि कमरे जी मुझे कह रहे हैं कि हमारे हेडफोन में मुझे कह रहे हैं कि प्लीज अभी आप कर लें, तो ये भी टेक्नोलॉजी, देखो ये होती है टेक्नोलॉजी।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: Right, welcome back, listening, you're listening to Sunrise, definitely, और यहाँ पे हमारा साथ देने अतिका साहब हैं all the way from Manchester से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम। तो सलीम भाई हैं, अब्दुल कय्यूम साहब हैं, वाजिद भाई हैं, सजा साहब हैं, फेरमान साहब हैं, महबूब इलाही साहब हैं, वो भी आज इंशाल्लाह शिरकत करेंगे।
0: बस आपने उनको दावत दे दी तो वो आएंगे और गाना भी सुनाएंगे। आज सुना है कि गाना सुनाएंगे और क्या कहने उनका भी वाजिद वा।
1: इंशाल्लाह तारिक भट्ट साहब हैं, राणा नवीस साहब हैं, उनका बहुत इंतजार है, राणा नवीस साहब का
0: जी।
1: चौधरी रुखसार साहब हैं, आसिफ रियासत साहब हैं, राव अजहर हुसैन जी हैं
0: जी,
1: और चौधरी मुजफ्फर साहब हैं
0: जी।
1: सबको बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो मैं अशार हैं, सबकी नजर करेंगे
0: जी जी।
1: कहते हैं इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, महताब ना सूरज ना अंधेरा ना सवेरा।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, महताब ना सूरज ना अंधेरा ना सवेरा।
0: वाह।
1: आंखों के दरीचों में किसी हुसन की चिलमिल और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा।
0: वाह।
1: शाहों में ख्यालों के गने पेड़ की शायद।
0: वाह।
1: अब आके करेगा ना कोई ख्वाब बसेरा।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: शायद वो कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा।
0: वाह जी वाह।
1: अब बैर ना उल्फत ना कोई रब्त ना रिश्ता।
0: वाह।
1: अपना कोई तेरा ना पराया कोई मेरा।
0: वाह।
1: अपना कोई तेरा ना पराया कोई मेरा।
0: वाह।
1: माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल पे तो फक्त एक ही घड़ी है।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है।
0: वाह वाह वाह।
1: हिम्मत करो जीने की तो एक उम्र पड़ी है, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, मेहताब ना सूरज ना अंधेरा ना सवेरा।
0: वाह वाह।
1: तो कहते हैं कि मेरा ख्याल आए तो महके चेहरा उसका, मेरा ही ना मेरे ही नाम से पाता है दिल करार उसका।
0: वाह जी वाह, क्या कहने।
1: न जाने कैसे ये रिश्ता बना है चुपके से, मेरे ख्याल से रोशन है हर दियार उसका।
0: वाह जी वाह, क्या कहने, बहुत खूब।
1: जब वो हंसता है खुशबू बिखेर देता है, गवाह बनता है हर लम्हा बार बार उसका।
0: वाह क्या कहने।
1: मेरे बगैर अधूरा सा लगता है खुद को, मेरे ही जिक्र से जुड़ता है इतबार उसका।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: ये कैसा राज है हम दोनों के दरमियां कायम, मेरे सुकूत में सुनता है वो पुकार उसका।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: वो मुझे सोच के चुपचाप मुस्कुराता है। वो मुझे सोच के चुपचाप मुस्कुराता है।
0: वाह।
1: इसी ख्याल में डूबा हुआ है प्यार उसका।
0: वाह।
1: मेरा ख्याल आए तो महके चेहरा उसका, मेरे ही नाम से पाता है दिले करार उसका।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: सुनो तुम मेरे कमरे में अपने लम्स की खुशबू किसी गुलदान के हाथों में रख जाना, या फिर तुम मेरे तकिए पे जहाँ यादों का मदफन है दुआ के फूल रख जाना।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: सुना है बोलते हो तो बहारें फूल चुनती हैं, तुम्हारा लम्स पाकर तो हवा भी मगरूर रहती है।
0: बहुत खूब।
1: बहुत खुशबू लुटाती है।
0: वाह।
1: सुना है कहकशां अक्सर वहां पर पाई जाती है जहां पर तुम कदम रखो। सुना है तुम सखी भी हो, पना मांगते ही लम्हों को गुलाबी रंग देते हो।
0: बहुत खूब बहुत खूब। वाह।
1: कई बेनूर आंखों में बहुत से ख्वाब और जुगनू बसाते हो। सुनो तुम मेरे लिए कर सको तो इतना कर देना।
0: वाह।
1: तुम मेरे लिए कर सको तो इतना कर देना, हवा से दोस्ती रखना।
0: वाह क्या कहने।
1: हवा मेरी दोस्त है, तुम्हें छू कर जो आएगी तो मैं भी सांस ले लूंगी।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: कुछ दिन और जी लूंगी, तुम मेरे कमरे के अपने लम्स की खुशबू किसी गुलदान के हाथों में रख जाना।
0: वाह क्या कहने।
1: निगाहों से चुप कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।
0: बहुत खूब।
1: मिटा कर हमें आप पछताइएगा।
0: वाह।
1: कमी कोई महसूस फरमाइएगा।
0: वाह।
1: नहीं खेलना सा जनों की हकीकत, समझ लीजिएगा तो समझ आइएगा।
0: क्या कहने,
1: हमें भी ये अब देखना है कि हम पर कहाँ तक तवज्जो ना फरमाइएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब, वाह।
1: हमें जब ना होंगे, हम ही जब ना होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा।
0: वाह जी, क्या कहने, बहुत खूब।
1: बुलाना हमारा मुबारक मुबारक, मगर शर्त ये है कि ना याद आइएगा।
0: वाह क्या कहने,
1: ये माना कि देखकर हमें रंजे फुरकत,
0: वाह,
1: मदवाई फुरकत ना फरमाइएगा।
0: वाह जी वाह,
1: मोहब्बत मोहब्बत ही रहती है लेकिन कहाँ तक तबीयत को बहलाइएगा।
0: बहुत खूब बहुत खूब,
1: ना होगा हमारा ही आगोश खाली, कुछ अपना भी पहलू नहीं पाइएगा।
0: वाह,
1: जनू की जिगर कोई हद भी है आखिर, कहाँ तक किसी पर ये सितम ढाइएगा।
0: बहुत खूब,
1: निगाहों से छुप कर कहाँ जाइएगा।
0: बहुत
1: थैंक यू,
0: वाह जी वाह, कमाल का दे, ब्यूटीफुल, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कमाल का दे, बहुत खुशी शारी की, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूँ। नदीम मंसूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं, वेलकम जी, आने खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, हजूर कैसी थी आपकी, ठीक ठाक से, ठीक है आपकी?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपने वेदर को एंजॉय किया, आपने बारबेक्यू कर रहे हैं माशाल्लाह, और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। अल्लाह पाक में शाम को खुश रखे, शादाबाद रखे माशाल्लाह। क्या कहने मेरे भाई,
4: शुक्रिया बहुत बहुत
0: माशाल्लाह, क्या कहने।
4: चलिए चंद अशआर हैं।
0: जी जी जी, वाह वाह वाह,
4: उनको मैं कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम में पेश करूँ।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
4: तो ये आपकी नजर और सबकी नजर।
0: जी जी,
4: खुशी हो या तो गम हो,
0: वाह।

0: मुकद्दर में जो लिखा है वो पूरा हो ही जाता है, मुकद्दर में जो लिखा है वो पूरा हो ही जाता है।
1: वाह क्या कहने।
0: उतार और चढ़ाव तो है हिस्से जिंदगानी के।
1: वाह।
0: उतार और चढ़ाव तो है हिस्से जिंदगानी के।
1: वाह।
0: कभी सहरा है रस्ते में तो दरिया हो ही जाता है।
1: क्या कहने।
0: न घबराए मुसाफिर तू।
1: वाह।
0: इन

0: निब उजाला हो ही जाता है, मुकद्दर में जो लिखा है वो पूरा हो ही जाता है। अगर मिल जाए कुछ तद में तो शिकवा रब से क्या करना।
1: वाह।
0: अगर मिल जाए कुछ सद में तो शिकवा रब से क्या करना।
1: वाह।
0: वही

0: जो सर सजदे में गिर जाए तो दिल को चैन मिलता है,
1: आहा,
0: जो सर सजदे में गिर जाए तो दिल को चैन
1: चैन,
0: मिलता है,
1: वाह,
0: खुदा के सामने हर बोझ हल्का हो ही जाता है,
1: आय हाय, माशाल्लाह, क्या कहते,
0: खुदा के सामने हर बोझ हल्का हो ही
1: कहता
0: जाता
1: हूँ,
0: है,
1: वाह,
0: वही तो जिंदगानी का असल चेहरा ही हो जा

0: दिल से सहारा हो ही जाता है। बहुत नजदीक है वो रब रखे
1: वाह
0: जहाँ से भी ऐ नादा पुकारो, जब उसे दिल से सहारा हो ही जाता है। कभी वो आजमाता है,
1: हाँ
0: कभी वो बख्श देता है,
1: वाह
0: कभी वो आजमाता है, कभी वो बख्श देता है, नवाजे वो अगर जर्रा सितारा हो ही जाता है। गमों
1: क्या कहने।
0: की धूप में जिसने भी शुक्रे हक का साया लिया,
1: वाह

0: मुकद्दर में जो लिखा है वो पूरा हो ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: कमाल का दिए मेरे भाई, कमाल कमाल ही का दिए। कितनी खूबसूरत शायरी आपने पेश की हमारे साथ और बहुत अच्छा लगा ये शुरू। मैं तो खो गया हूँ शायरी में, बड़ी कमाल की शायरी, बड़ी खूबसूरत है। हर जो अल्फाज है चुन के लेके आए हैं माशाल्लाह, और बड़ा ही खूबसूरत। आपने खुद लिखा है या किसी और का ये शायरी है?
0: ये किसी और का है।
1: माशाल्लाह बहुत ही कमाल की, और जो आपने उसके साथ है ना बहुत ही खूबसूरत है। क्या कहते हैं ठन ठन क्या कहते हैं। बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही खूबसूरत है। और हम अगले आवर में भी एक गाना सुनेंगे आपकी आवाज़ में। बड़े दिन हो गए कि गाना जो है ना वो के हमारे अली भाई कह रहे हैं कि नदीम साहब को कहें कि वो गाना सुनाएं, और हम इंतज़ार में होंगे। तो इंशाल्लाह जब भी आपको मौका मिला नेक्स्ट आवर में तो आप आएँगे और गाना भी सुनाएं। और अली भाई आपका शुक्रिया अदा करें, उन्होंने कहा कि उनको मेरी तरफ से सलाम कर सलाम पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, और ब्रेक के फौरन बाद यहाँ पे ब्रेक तो कोई भी नहीं है। चलो तो यहाँ पे तो ब्रेक तो नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और बहुत बहुत शुक्रिया कुमारी जी, ये क्या कर रहे हैं आज, क्या मस्ती कर रहे हैं आज हमारे साथ। और आप मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक है, तो ब्रेक तो है ही नहीं है, ये क्या मेरे साथ ये गेम खेल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एनीवे यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं, जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। गुरु जी हैं हमारे, गिदन भाई हैं, और हमारी भाभी जान हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: वालेकुम
1: सलाम भाई जान, कैसे हैं? मैं तो फर्स्ट क्लास, ए वन आपका इंतज़ार कर रहा था कि कब आएंगे आप और हमें कुछ ना कुछ सुनाएंगे। और क्या कहने मेरे भाई, आप आ गए और दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, क्या कहने।
2: हाँ वही ना, आज अतिका जी ने कुछ गाना वाना कुछ नहीं सुनाया, आज मजे नहीं आए।
1: हाँ हो चलो जी है? तो आपको
2: बोलना पड़ेगा वापस आके सुनाएंगे
1: जी। अच्छा
2: अच्छा, तो ऐसी बात है ना कि एक गरीब आदमी
1: जी
2: गरीबी से बहुत तंग होकर बोला।
1: अच्छा,
2: कि गरीबी से गरीबी की कोई जिंदगी है?
1: अच्छा,
2: ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है।
1: अच्छा,
2: ये सुनकर ऊपर से कोई आया
1: जी,
2: और बोला तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं।
1: ओए ओए ओए ओए, अल्लाह रहम करे, क्या कहने, जबरदस्त, दैट वाज अ ब्यूटीफुल, क्या कहने जी, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया।
2: तब वो गरीब आदमी बोला, ये लो।
1: अच्छा,
2: कि गरीब आदमी मजाक भी नहीं कर सकता।
1: मजाक भी नहीं कर सकता भाई, क्या कहने, ये देखो ये तो होती है ना आजकल के, क्या कहने, सोच समझ के करना पड़ता है ना जो भी करें, क्या कहना।
2: वही ना
1: ये ना बोले
2: ऐसी चीज है ना, अगर अच्छी बात आप बोले तो अच्छा लगे, बुरा बोले तो बुरा ही लगेगा।
1: इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा
2: जबान से काबू रखना चाहिए।
1: हाँ, जबान से काबू रखना चाहिए और सोच समझ के, कहते हैं हमारी पंजाबी में कहते हैं पहले तोलो तो फिर बोलो, और वही हाँ। बात हो रही है। और ये जो चीज होती है ना, ये देखना पड़ता है कि हमेशा हम कहते हैं कि पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी की ना सोचें, पॉजिटिव सोचें। और ये जो आपने कहा ना कि जबरदस्त कमाल का दिया, इसमें भी सबक मौज है, इसमें भी कहानी है। देखो हम तो लाइटली ले रहे हैं, तो ये देखो कि इसमें भी एक सबक है कि आपने पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक अबाउट हाईली, ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव, नेवर थिंक अबाउट नेगेटिविटी। और वही बात हो रही है, आपने कमाल का दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चलो तो सबसे पहले मैं
1: जी जी
2: हमारा शकीर भाई को
1: जी जी,
2: हमारा जवीद मीर भाई को, हमारा मोहम्मद हनीफ भाई है
1: जी जी,
2: साजिद भाई, वाजिद भाई, हमारा उस्ताद चौधरी फरियाद भाई,
1: चौधरी फरियाद साहब वो आप हमारे साथ दे रहे हैं, वो आपका उन्होंने नाम रखा हुआ है, तो वो भी हमारा साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, क्या कहने उनका। हाँ,
2: वो तो उस्ताद आदमी है,
1: उस्ताद है जी जी,
2: उसका नाम उस्ताद
1: था, उस्ताद।
2: हाँ, तो उसके बाद सजाद पहलवान है, इकबाल भाई है, पापा शफीक है, डॉक्टर मलिक साहब है
1: माशाल्लाह, क्या
2: मोहम्मद रफी साहब है, हमारा भाई जान परवेश खान भाई है,
1: क्या कहने, बहुत शुक्रिया,
2: समरीना खान है, आसिया जी है,
1: प्रतीका
2: जी है, सलीना जी, सिमी जी, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, मित्रा मिसिस पटेल और जो जो सुनते हैं सबको हमारा बहुत बहुत सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
2: तो ये है कुछ मुकेश जी का गाना है 1968 का
1: जी।
2: दिल से तुझको बेदली है,
1: हाय हाय हाय हाय,
2: मुझको

मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का स्वरूप, तुम पहचाने तो है तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन गुस्से मर जाएंगे हम, ऐसे वीराने में एक दिन

0: अनापन है या मोहब्बत का सुरूर, हे मेरा दीवानापन है, हे मेरा दीवानापन है। थैंक यू।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, होए होए होए होए, क्या आपने मेमोरी याद करा दी आपने। और दिलीप कुमार साहब की मूवी थी और क्या कहने, यहूदी मूवी का नाम था और क्या कहने जी, क्या कहने। और आपने वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना खूबसूरत गीत गुनगुनाया, बहुत ही मज़ेदार गीत था। और आपका शुक्रिया अदा करें, डॉक्टर मालिक का शुक्रिया अदा करें कि उनका फेवरेट गीत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कमाल कर दी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वालेकुम अस्सलाम। और क्या मेमोरी थी इस गाने में और क्या फिल्म थी। और हम वेलकम कहेंगे, जियन कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे हमारी बाबी जान को। वेलकम जियानो, खुश आमदीद बाबी जान, हाउ आर यू?
2: हम फाइन भैया, आप कैसे?
1: मैं ठीक हूं, फर्स्ट क्लास A1 हो रहा है ये आपके लिए। वाह वाह वाह, ये गाना मैं सुन के तो मैं तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या गाना उन्होंने गुनगुनाया, बड़ा ही खूबसूरत गाना, वेरी वेरी नाइस। वाह,
2: कितना प्यार से सब
1: बोलते हैं, हाय हाय, कितना प्यार से, कितने प्यार से, क्या कहते हैं। और वो जो ना
2: आप हमको इज्जत देते हैं इतना
1: जी, वाह
2: होता है।
1: ये जो प्रोग्राम है ना बाबी जान, हमेशा मैं कहता हूँ और आज भी मैं कहूँगा कि ये एक फैमिली प्रोग्राम है और आप सब मेरी फैमिली हो। और ये एक बैठक है, माशाल्लाह आप आ रहे हैं, माशाल्लाह गाना गुनगुना रहे हैं, शेर शायरी कर रहे हैं, इसीलिए
2: बात करने का अंदाज सब कुछ मैं हमेशा सोचती हूँ बहुत अच्छा होगा।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपका प्यार है, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा यही हमारा मकसद यही है, मेरा मकसद यही है कि आप खुश हो जाएं तो मैं खुश खुश हूँ, क्या हाल, यही वो बात हो रही है। और क्योंकि आज का आपको पता
2: है
1: माशाल्लाह, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने।
2: चलो हम सबको जी समझते
1: कि हमारा जैसा भी गाना गाया, हाँ हाँ देखो ना कितना
2: खूबसूरत अच्छा गाया
1: जी, बहुत ही प्यार,
2: लंदन वाले आते हैं, बहुत अच्छा।
1: हाँ हाँ हाँ, शहीद एहसान है जी जी जी, वो आएंगे और आज इंशाल्लाह वो आएंगे। इशफाक रसूल साहब, उनकी जो आवाज़ सुनेंगे ना, इशफाक रसूल साहब में तो उनकी आवाज़ सुनेंगे, देखेंगे वो क्या, कितनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है। अमारा चौधरी,
2: अमारा
1: हाँ, और हमारे चौधरी फरियाज साहब में, वो भी आपको पता है इतना खूबसूरत गाना गुनगुनाते, इतनी प्यारी आवाज़, आज भी गाना गुनगुनाएंगे
3: वो तो उस्ताद है,
1: उस्ताद है, उस्ताद है, उसने आपने बड़ा ही खूबसूरत, बाकी इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक है ही नहीं है, कोई शक नहीं है।
2: शाविद भाई है, ममता भैया
1: जी जी,
2: फिर क्या है वजीद भैया
1: जी,
2: ज्योतिष भैया भैया
1: जी,
2: जितना दूर से फोन करता है बेचारा
1: जी जी। माशा देखो ना, ये होती है देखो,
2: रात को जागना इज नॉट इजी।
1: हाँ, इट्स नॉट ईजी, बिलीव करें, इट्स वेरी वेरी हार्ड और मुश्किल भी है। और दूसरा ये है कि खर्चा होता है, बिलीव करें कि इतना खर्चा होता है पाकिस्तान से फोन करने। हाँ देखो, ये टाइम निकालता है, देखो टाइम निकाल के आ रहे हैं माशाल्लाह, वो बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात,
2: बहुत मुश्किल होता है, दो तीन बजे लगता है।
1: हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है, जी शायरी की है बड़ी, आज इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह आएंगे जी।
2: फिर मोहम्मद रफी भैया है
1: जी,
2: नदीम का, सबको सलाम,
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: तो नाम नहीं देती लेकिन सबकी बात अच्छी लगती है, सबका गाना अच्छा लगता है
1: माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने जी।
2: हमारा आशिया जी है, अतिका जी है, सलीना है
1: जी,
2: एमी है, रेखा जी, हमीदा जी, सितारा जी, सबको सलाम, सलाम आपको, आपको
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू।
2: मेरे पास गाना ये मोहम्मद मदर इंडिया का है, चलेगा
1: बाबी जान? गो हेड, ये गाने जो भी हैं हम सब एक ही हैं, सबके लिए एक ही हैं जी, गो हेड।
2: मैंने अभी बुक में देखा तो मैं ट्राई करती
1: हूं। कोई कोई कोई बात नहीं बाबी जान, आपको कोई भी गाना, लॉलीवुड बॉलीवुड, हम एक ही हैं, हम सब एक हैं जी।
2: घूमते नहीं खोलू, घूमते नहीं खोलूंगी, तैयार तो ले आगे,
1: वाह वाह वाह,
2: यकीन नहीं खोलूंगी तैया तोरी आगे उम्र मुड़ी तानी
1: कर
2: मुझी लागे उम्र मुड़ी तानी कर मुझी लागे कुंभटे नहीं खोलूंगी तैया तोरी आगे
1: वाह
2: मुख पे घूंघटे नैनों में
1: रखिया
2: मन ही मन मुस्काऊं
1: वाह
2: मन मुस्काऊं दिल की बतिया तू ही समझ ले दिल की बतिया तू ही समझ ले मैं कैसे बतलाऊं है मैं कैसे बतलाऊं यारा मुड़ा लड़के बदन मोहे लागे मेरा मुड़ा लड़के बदन मोहे काफी घट नहीं बोलूंगी सैया तुरे आगे
1: वाह
2: नाच नाच अंग अंग मुरली पे धुन पे गाए मन मत वाला गाए मन मत वाला दिल पे मोरी तू ही बलमवा दिल पे मोरी तू ही बलमवा ऐसा जादू डाला है ऐसा जादू डाला जियरा मुड़ा लूटा सुरिया बजा के जियरा मुड़ा लूटा
1: वाह वाह
3: परवेश भाई
1: जी जी जी जी
3: बहुत मुसीबत से मैंने घूंघट उठाया फिर
1: मैं कहने वाला था मैंने कहा किसके लिए मैं कहने वाला था और मैं चुप हो गया और क्या कहने घूंघट जी जी
2: हस्बैंड कैसा है कि मेरे को बदनाम करते
1: नहीं नहीं नहीं नहीं ये जो प्यार है ये मोहब्बत है प्यार है ये इसी को कहते हैं प्यार और यही जिंदगी है और खुशी के साथ आप गुजारें और यही प्यार है यही मोहब्बत है और क्या गाना आपने गुनगुनाया मदर इंडिया का ओए होए होए क्या कहने क्या मूवी थी क्या मूवी थी हाय हाय हाय हाय देखो नहीं नहीं ये आप लुकी यू वेरी लुकी देखो आपके साथ देखो वो एक जोक वगैरह कर रहे हैं शुगल मेला कर रहे हैं वो बात है ये देखो देखो ना ये प्यार इसी को कहते हैं ना और एक प्रोग्राम होता था जब हम बचपन में इसी का नाम जिंदगी है और वो करते थे हमारे फरूख शेख साहब थे और बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही नायाब होता था प्रोग्राम बड़ा ही खूबसूरत है और वो प्रोग्राम ही आजकल ख़त्म हो गया और क्या कहेंगे यही वो प्यार मोहब्बत है
2: जीने के लिए बहुत कम
1: हाँ ये जिंदगी जो हाँ
2: ऐसा नहीं जियो तो ऐसा जियो कि सब कुछ तुम्हारा है
1: हाय हाय हाय हाय हाय क्या लें वाह वाह वाह
2: चले जाओ जब जाए तो ऐसा समझना कुछ भी नहीं था
1: हाय हाय हाय हाय हाय देखो कितनी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की है इतनी खूबसूरत देखो आपने इतना प्यारा और क्या जुमले कहे और जुमले बोले आपने बहुत अच्छा लगा ये सुन के और जिंदगी को इंजॉय करें चार दिन की जिंदगी है बिलीव करें
2: ये हाँ। हम लोग ऐसा नहीं समझना कि कल करेंगे
1: नहीं नहीं
2: जो करना है वो
1: आज ही करें आज के क्या पता कल हो ना हो क्या पता कल हो ना हो इसीलिए मैं कहता हूँ कि
2: देव खुशी देव सबका अच्छा करो
1: हाँ अच्छा करो और अच्छा सोचे
2: तो सब हमको याद करें
1: भाभी जान मैं हमेशा एक बात करता हूँ और आज ही मैं दोबारा मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूँ और एक बात मैं करना जो भी है ना अच्छा खाएं अच्छा पिए अच्छी सोच रखें और अच्छा बोलें और जब दुनिया के चले जाए ना दुनिया आपको याद करे दुनिया आपको याद करे पीछे से ना वो आपके लिए रोए वो आपको याद करे और आप सीखे सबसे सीखे और जिंदगी से यही है जिंदगी कोई पता नहीं बड़े बड़े बड़े बड़े
2: बुरा है ना भैया तो इसको भी बुरा नहीं
1: कहो नहीं नहीं नहीं नहीं क्योंकि ये हमारा हमारे में नहीं है नहीं नहीं वी कांट नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी क्योंकि जो भी है वो ऊपर वाला है अल्लाह जानता है अल्लाह भगवान ईश्वर जानता है और हम किसी को ये नहीं कहेंगे ही और शी इज़ बर्ड, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को कहने वाले, और सब अच्छे हैं, दुनिया के क्रिएशन है, दुनिया के बंदे हैं, हर बंदा जो है ना बहुत ही खूबसूरत इंसान है और उनकी अपनी है, हर अल्लाह ताला ने इंसान को, हर इंसान को अच्छा बनाया, हर दुनिया को, वो कहते हैं ना कि जिंद परिंद और खूबसूरत है अल्लाह की मखलूक है, हर चीज़ जो है ना दुनिया ने बनाई है, ऐसी है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाभी जान, और गाना आपने गुनगुनाना है, कुछ और बात आपने करनी? जी जी क्यों नहीं भाभी जान, गो हेड क्यों नहीं, गा लें जी जी।
2: जो मैंने अच्छा बात किया था, आपने एक फरमाइश दिया मेरे को।
1: अच्छा जी जी, गो हेड जी जी।
2: छोटा है
1: जी जी।
2: चुप गया कोई रे, दूर से पुकार के,
1: वाह वाह वाह,
2: अनोखे दे गया प्यार की। चुप गया कोई रे, दूर से पुकार के,
1: वाह,
2: दर्द अनोखे आए के गया प्यार।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
2: हाँ तुम्हें सोनी सोनी दिल की गलियां बन गई।

0: छिप छिप रोई मेरी कोई कोई नैनी,
1: वाह वाह वाह,
0: भगवानी मेरी जिनकी सिंगार के,
1: वाह
0: प्यार के प्यार के छिप गया कोई रे,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने,
0: दर्द अनोखे आए दे गया प्यार के,
1: वाह वाह वाह वाह,
0: सब हमारा रेडियो में आता है
1: जी,
0: वो सुनकर सब चीज,
1: हाय हाय हाय, बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, कितनी खूबसूरत आपकी मेमोरी है और बड़ा ही खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाया, गोइन बाकी ने मेमोरी लेन और 1957 का गीत आपने गुनगुनाया, ब्लैक एंड वाइट मूवी थी और क्या मूवी थी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबी जान, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट यू हैप्पी माशाल्लाह, और सब खुशी के साथ जा रहे हैं आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम बाबी जान,
0: जी
1: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, अपना ख्याल रखें और बहुत खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दोनों का शुक्रिया, बब वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और यहाँ पे हमने करना है टाइम चेक करना है,
2: सनराइज रेडियो your soundtrack, your time check.
1: Well, time in the studio is 49 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night. Wherever you are, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे निक्की जी ब्रेक होगी, छोटी सी ब्रेक होगी, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम चौधरी फरियाद साहब हैं, हमारे शवाक रसूल साहब हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, हमें अच्छा लग रहा है आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था, इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
5: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you? When you

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू सुन्नत रेडियो। और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं इशफाक रसूल साहब, भी हमारा साथ दे रहे हैं। माशाल्लाह, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है। इतनी खूबसूरत इनकी जो माशाल्लाह की गाने की चोट होती है, जो गाना गुनगुनाते हैं, और इनकी जो आवाज़ है, ब्यूटीफुल वॉइस, और क्या कहने। और बहुत बहुत शुक्रिया इनका जो इन्होंने मुझे टाइम दे रहे हैं। इशफाक रसूल, जो एक बहुत बड़ा नाम है यॉर्कशायर के ब्रैडफोर्ड का। और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही है कि आप आए, आपने मुझे टाइम दे रहे हैं। मुझे पता है आप बहुत ही बिजी हैं, और माशाल्लाह, और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट यूज वेल माशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। और आज हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं? जी
1: वैदी हसन का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए।
0: जी जी जी जी जी जी,
1: मेरे तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और आदाब।
0: जी
1: और मैं भी वैदी हसन का ही आपको सुनाऊंगा पहले गाना।
0: वाह जी वाह,
1: सेकंड हाफ में एक और अच्छा गाना सुनाऊंगा आपको
0: माशाल्लाह। क्या कहने क्या कहने क्या कहने,
1: वाह। बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ,
0: हाय हाय।
1: जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर,
0: हाय हाय हाय।
1: जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर,
0: वाह।
1: तुमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए।

0: कभी मुझे से कह कहे अब अपने इख्तियार में वो भी नहीं रहे, किस्मत में रह गई है तो आहे तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जबान, वो सामने भी हो तो ना खोलेंगे हम जबान, लिखी है उसके चेहरे पे अपनी ही दास्तां, उसको तरस गई है ये बाहें तो क्या हुआ, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर, वो लौट जाए हम पे इनायत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, पहले करीब था कोई अब दूरियां भी हैं, इंसान के नसीब में मजबूरियां भी हैं, अपनी बदल चुका है वो राहें तो क्या हुआ, हम चुप रहेंगे उस को मलामत किए बगैर, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर, हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर।
1: होय होय होय होय होय होय, वाह वाह वाह वाह, कमाल ही कर दिया मेरे भाई, वाह वाह, इतना खूबसूरत है गाना गुनगुनाया और इतनी प्यारी आवाज़ है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं मेरे भाई, कमाल ही कर दिया। और हम एक और सुनेंगे नेक्स्ट आवर में जब भी आपको मौका मिले, और आप मैं होल्ड कर लूँ या आपने दोबारा फ़ोन करेंगे?
0: दोबारा कर लेता हूँ।
1: ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मर्जी है, आपने होल्ड करना है होल्ड कर लें, जो आपकी मर्जी है, ठीक है ना,
0: चले मैं होल्ड कर ले, होल्ड कर ले,
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त,
2: हाय हाय, कभी गूंजे थे कहते अब अपने,
1: और क्या कहने जी, क्या कहने, मज़ा आ गया जी, चश आ गई, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम भी हैं, और इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मोहतरम भाई दोस्त है, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और ये हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं पाकिस्तान से हमारा साथ दे रहे हैं, और हमारी खुश नसीबी है, और आज कमाल ही कर दिया, कमाल कमाल कमाल ही कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आ गए और माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करना, और जो सारे सुनने वाले हैं और आपके चाहने वाले वो इंतज़ार में हैं माशाल्लाह, और नेक्स्ट आवर में आपको लेके जाऊंगा, जल्दी लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, और आपके साथ हम कलाम होंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आपने इंतज़ार किया, वेट किया, और आपके चाहने वाले वो माशाल्लाह इंतज़ार में, डेफिनेटली आप किसे सुनेंगे, बहुत खूबसूरत है, शायरी भी सुनेंगे, गाना भी सुनेंगे, और आप तैयार हो जाओ, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का, अल्लाह पाक में आपको खुश रखे, शायद बात रखिए, और हमारे चौधरी फरियाज साहब के लिए ये, वाह ये हैं हमारे मोहतरम चौधरी फरियाज साहब और इन्होंने मेरे लिए माशाल्लाह ख़र्चा किया है, माशाल्लाह एक नई किताब लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो किताब इतनी खूबसूरत शायरी, इतना कमाल की शायरी है, उसमें जो ना एक से बढ़कर एक शायर हैं, और क्या कहने जी, क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और हमने क्या करना है कि न्यूज़ ब्रेक करेंगे, न्यूज़ ब्रेक के बाद यहाँ पर धमाका होगा, क्योंकि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे चौधरी फरियाज साहब हैं, हमारे इशफाक रसूल साहब हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी आवाज़ इनकी है, और गाना जो उन्होंने सुनाया बड़ा ही नायाब, बड़ा ही खूबसूरत है ये जो गाना इन्होंने सुनाया है, और काफ़ी दोस्तों ने इसकी नकल भी की है, कॉपी भी किया है बॉलीवुड में, लॉलीवुड में, और प्राइवेट एल्बम में, और क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने, ज़बरदस्त, इसमें कोई शक है ही नहीं है, और वाकई इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी आवाज़ है, इशफाक रसूल साहब की बड़ी प्यारी आवाज़ है। और यहाँ पर हमने न्यूज़ ब्रेक करनी है, और देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 10... Two people on board a cruise ship linked to a hantavirus outbreak are said to be self-isolating after returning to the UK.
5: There is a plan potentially for a one-page document where both sides agree to a set of proposals, a memorandum of understanding, effectively, on which they can negotiate, and that would mark the formal end of the conflict.
4: That's Professor Robin May from the UK Health Security Agency. Neither are said to be reporting symptoms. Health experts insist risk to the general public is very low. The ship's now on its way to Tenerife. Donald Trump's threatening what he's calling a higher level and intensity of bombing if Iran doesn't agree to a deal. It's reported the two sides are close to reaching an agreement. Travel group ABTA says flight cancellations amount to less than 1% overall, as it insists there isn't a problem with fuel supply. Around 120 trips from the UK didn't go ahead as scheduled this month. Ryanair's boss wants to see an end to early morning pre-flight pints at the airport. Michael O'Leary claims disruptive passengers are forcing almost a plane a day to divert, up from one a week a decade ago. Airport bars don't have to follow the same licensing laws as other venues. Emma Henderson's a former EasyJet pilot and remembers the worst drunken incident she's seen.
6: We had actually pulled onto stand and were parked, and I had just left the flight deck to go and say goodbye, and a fight broke out on board. One of the passengers headbutted another passenger and his nose was flattened into his face, and it was horrific for everybody around. It was 3 a.m. We had to call the police.
4: Arsenal will face holders Paris Saint-Germain in the Champions League final. The French side drew to Bayern Munich 1-1 in Germany, meaning they progressed 6-5 on aggregate. The showpiece is in Budapest at the end of the month. And Manchester City have been crowned Women's Super League champions. Arsenal's 1-1 draw with Brighton means they can't be caught. That's the latest. I'm Imani Rana.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के जो भी मेरे साथ ही हैं और दोस्त अहबाब अजीज़ हैं, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ उनका कि आपने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये जो हिट ऑफ द आवर था उन दोस्तों के साथ है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और उससे पहले हमने करना है टाइम चेक करना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेल, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हम जो भी है कि हमें काम जो ना वो करना पड़ता है। और यहाँ पे
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, our time in the studio is 8 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in with the Parviz Khan. Or yahan pe हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, जितनी की मैं तारीफ करना कम है, यहाँ पे हमारा साथ हैं चौधरी फरियाज साहब, वेलकम जी हैं, खुश आमदी कहेंगे, काफ़ी टाइम के हॉल पे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। चौधरी फरियाद वाह जी वाह, क्या कहने,
2: बड़ी मेहरबानी जनाब ने, और
0: माशाल्लाह माशाल्लाह आप हकदार हो मेरे भाई औरजाई ने, और आज कल तो माशाल्लाह हमारे लिए खर्चा भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो सुनने वाले हैं हमेशा ही आपके साथ तावन करते हैं, और आज भी उनने बड़े अदब अदाब से आपको वेलकम किया है माशाल्लाह। और नशीन साहिबा हैं, साइमा जी हैं, माशाल्लाह फरजाना जी हैं, और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है, तो बड़ा ही अच्छा लगा जी माशाल्लाह जी।
2: जनाब उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी दुआ अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा सलामत रखन,
0: आमीन,
2: अल्लाह पाक उन्होंने की हर खुशी अता फरमान
0: जी।
2: ते जनाब असा भी जिस शायरी होनी है असा पढ़ने आ, अगर उन्होंने पसंद लिखनी है तो असा पढ़ने वास्ते हाजिर है, ऐसी कोई बात नहीं। और असा जेड़ा बंदा मिसाल कोई बंदा उसने को फन होना
0: जी,
2: कोई भी वह
0: जी जी,
2: अगर उसकी उस फन के मुताबिक याद किया जाए तो उस बंदे ने हक बना के याद करने वाली खिदमत हाजिर हो जाओ, ये नहीं के नखरे करो या इस तरह। अफसोस ना दे भी, मैं अफसोस ना लाखना के वही मेरा दिल बड़ा करना के कुछ वक्त ऐसी असा भी गुनगुनाने सा आवाज भी ऐसी साफ की सी
0: जी जी,
2: लेकिन हम अफसोस ना लाखना पेना के यकीन करो कि मेरे जेड़े फेफड़े ना ये इधर इंग्लैंड विच भी लाज ते पाकिस्तान विच लाज, अगर मैं तो थोड़ा बाला तुसा नी खिदमत हाजिर होना ना ते तुसा संगियां दी दुआवां ने
0: जी जी
2: माशाल्लाह, तुसा नी दुआवां ने आसरे ना चल लिया
0: माशाल्लाह माशाल्लाह।
2: जेड़ा तुसा साहिबा जी कुछ गाने नी फरमाइश कीती सी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम विच दसण कोशिश करता, गाने ते साडे कोल इक दो ही ने होर ता एवें टुटकड़े जुड़े,
0: हाय हाय हाय क्या कहने, वाह जी वाह क्या कहने,
2: उन्हें नी फरमाइश जरूर पूरी करता,
0: वाह जी वाह क्या कहने जी
2: जी। अज ना जरा ना मैं अर्ज करा के जेरे भाई जान गए उन गए
0: ना, वो मेरे साथ इश्वाक रसूल मेरे साथ हॉल पे ने माशाल्लाह,
2: इश्वाक भाई बड़े खूबसूरत अंदाज नाल यकीन करो बड़ी खुशी हुई है
0: जी,
2: और उना उसे अंदाज नाल गाना पेश किया जिस अंदाज नाल बड़े फनकार ने पेश किया,
0: वाह वाह वाह वाह, तारीफा हो रही है, तारीफा हो रही जी, देखो ना देखो। और यहाँ पे उनके साथ दोबारा देखता हूँ कि वो क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही रेडियो के, क्योंकि वो वहाँ पे क्योंकि लाइन पे है हमारे साथ दे रहे, तो शायद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो हमारा हमारे साथ ही या हॉल पे हैं अभी। और अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु,
3: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि,
0: माशाल्लाह आपकी तारीफ हो रही है हमारे चौधरी फरियाद साहब ने, बड़ी तारीफ की आपकी माशाल्लाह, गाने की आवाज की तो बड़ा ही अच्छा लगा माशाल्लाह, बड़ा ही अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत ही आपके साथ माशाल्लाह तावन किया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है माशाल्लाह, और तारीफ का पुल बांध रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप थोड़ा होल्ड करेंगे, आप थोड़ा देर और उनको मैं लेके जाना, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, होल्ड करें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारा साथ देने हमारे चौधरी फरियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपने सुन लिया माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी, आपका भी शुक्रिया जी
2: जी वेलकम
0: जी।
2: इस तो बाद जनाब असाने जे जी किधर भाई ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गल्ला उन्होंने कीतियां ने
0: जी,
2: ते बड़ी खुशी हुई है
0: माशाल्लाह,
2: ते जरा अपना एक गल दसी पेश कीती कि ओ मजाक भाई
0: मजाक
2: ना कोई करता
0: जी जी जी, आ बड़ा
2: चंगा लगा उन्होंने गल सुनी थे ना, ते कोई किसे बंदे ने किसे ने कोई चप्पल मारिया वाल करके जे
0: अच्छा अच्छा,
2: और बंदा पूछना यार तुम्हें गुस्से नाल मारिया या मजाक नाल मारिया,
0: या मजाक नाल मारिया जी जी, उस्ताद
2: मैं उस्ताद ना मैं तुहाडा शागिर्द हां
0: जी
2: या मेरा शेर सुनो ते तुसी फिर आप ही
0: जी
2: मैं शागिर्द हां या उस्ताद हां मैं तुहाडा शागिर्द हां
0: जी
2: ते बड़ा खूबसूरत शेर लिखने ने के सब कुछ देख के इश्क दी पाई दौलत
0: वाह जी वाह
2: सब कुछ देख के इश्क दी पाई दौलत मैं बर्बाद भी हां ते आबाद भी हां
0: हाय हाय हाय हाय हाय
2: सहज इश्क से मजनू है मेरा तालब
0: वाह
2: सहज इश्क से मजनू है मेरा तालब मैं शागिर्द भी हां ते उस्ताद भी हां
0: वाह
2: जुल्फ यार अंदर घर बार भुलिया
0: वाह
2: जुल्फ यार अंदर घर बार भुलिया मैं गमगीन भी हां ते दिलशाद भी हां वफा दिल देता ते मुख गए जेड़े बंदी वान भी हां ते आजाद भी हां
0: क्या कहने वाह
2: गिदर भाई ने बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी
2: ए समझो कि आज नहीं महफिल ने जेड़े हीरो ने गिदर भाई ने और सारे अशफाक भाई ने
0: अशफाक रसूल भाई जी माशाल्लाह
2: जी तो सबसे पहले उनमें सलाम दो शुरू करा मेरे
0: जी
2: अतीका भाजी ने आज भी उन्हें माशाल्लाह खूबसूरत शायरी और खूबसूरत गल्ला कितिया ने मैं बड़ी खुशी
0: जी
2: होनी है जब वो महफिल आगाज करम
0: जे जी जी
2: शाहपरी जी ने जलेखा जी ने सतारा जी ने भाभी साहब ने गिदड़ भाई ने फरजाना जी ने सहमा
0: जी
2: फरमाश इंशाला अगले प्रोग्राम फरमाश पूरी करता बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा साढ़े मोहतरमा अमर भाई ने महबूब लाई साहब ने दसर साहब ने हाजी सलीम साहब ने चौधरी मनीर सैन चक्की अली ने शकील साहब ने हीरा भाई ने वाजिद भाई अयूब चौहान साहब जावेद मीर भाई अब्दुल कजूम भाई नवीद राणा साहब जनाब तारक भट्ट साहब ने
0: जी
2: अगर तारक साहब मेरी आवाज सुनने ने उन्होंने गुजारिश है कि साढ़े ना राबता करो बड़ा चिर होया कोई साड़ी गल बात नहीं हुई इधरों साढ़े को राबता मुजफ्फर अली हीरो साहब ने महमूद साहब ने रजत शोएब साहब ने
0: जी
2: और सब दोस्तों मेरा बहुत बहुत सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम
2: पहले शेर बिस्मिल्ला करा बड़ा खूबसूरत शेर हजूर पाक ने शान है कि ओ की शान हजूर दा दस सकदा
0: माशाल्लाह क्या कहने
2: ओ की शान हजूर दा दस सकदा जेड़ा दूर अकीदत थी रहन वाला
0: वाह
2: उसनो शान हजूर दा पुछ जाके बजम विच जो आका दी बहन वाला
0: वाह जी वाह क्या कहने
2: किला मेरे हजूर दियां अजमतां दा ना कोई टा सकया ते ना ये टहन वाला
0: वाह
2: मेनू कदों लगदा चंगा ओ हाफिज
0: वाह जी वाह
2: मेनू कदों लगदा चंगा ओ हाफिज मंदा मेरे हजूर नू कहन वाला
0: हाय हाय हाय क्या कहने माशाल्लाह वाह
2: ते और मजाक ने रंग च आज मेरे शेर ना अनवान है
0: जी जी
2: के आसा किसी की याद
0: किस तरह करने
2: हैं अगर जिसकी याद करने हैं क्या वो भी आसा की याद करना
0: वाह वाह वाह
2: आना वहां पिंड च या पिंड थी बाहर किधरे
0: वाह
2: ओ वहां पिंड पिंड विच या पिंड थी बार किधरे याद आई रेंदी हर दिन हर रात तेरी
0: वाह
2: सोचा सेन नहीं देंदियां अखियां नू
0: वाह वाह वाह
2: सोचा सेन नहीं देंदियां अखियां नू ओ जदों ज़हन अंदर छिड़ जाए बात तेरी
0: वाह वाह वाह
2: अल्लाह वास्ते कोई तरकीब दस दे अल्लाह वास्ते कोई तरकीब दस दे जिस थी काम हो जाए चात तेरी ये तो खात लिखदा जमुदर में फिर भी निसब हो सकती है मुलाकात तेरी
0: वाह जी वाह क्या कहने
2: आखिया फिर याद तेरी पैरी उम्र अंदर आके रोज मेरे अमतान लेंदी कदे फेर कर दी कदे पास मेनू तरह तरह दे मैं थी बयान लेंदी
0: वाह
2: बाल कालिया थी हो गए सफेद मेरे हिम्मत विच कर फिर भी जवान लेंदी लखा होलिए बदली जमुर्द कीते फिर भी पुलदी नहीं मेनू पहचान लेंदी
0: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब
2: क्या फिर याद है सनम खुदा दा वास्ता ही
0: वाह
2: बार बार ना मेनू सता चली जा
0: वाह
2: चार पैर दी रात आसान गुजरे सोचा गहरिया विच ना पा चली जा
0: वाह क्या कहने
2: सुबह उठ के संदे अजहार करने तू बे मकसद ना मैनू जगा चली जा आन वाले नहीं आंदे जमुर्द जे कर तेरी दौड़ की है तू भी जा चली जा
0: चली जा। वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब।
2: अच्छा नाल लै के आवे ते आप आवे। अच्छा भाई जिन्होंने याद है उन्हें कि नाल लै के आना कल्ले
0: जी
2: नाल लै के आवे ते आप आवे तेरा कल्या आना नहीं गुवारा चली जा उन्हें कोल रो जिन्हों की याद है तू ना फिर गर्द तू मेरे आवारा चली जा।
0: वाह जी वाह क्या कहने।
2: उल्टा आन के तेरा नुकसान मेरा उल्टा आन है तेरा नुकसान मेरा तेरे बाद हो जाती गुजारा चली जा
0: हमें
2: मुक्ति सख्ती जमुर्द बन के तेन कसम दिया में दोबारा जा चली जा।
0: वाह जी वाह क्या कहने बहुत खूब।
2: अच्छा फिर लखां विच बैठिया आ जांदी लखां विच बैठिया आ जांदी याद है सनम तहाइया नु वेख तकदी नहीं भावे दूर को कावसी आन बेली रोज आने जाने थकदी नहीं।
0: क्या कहने बहुत खूब।
2: रुठिया होया भी उसकी कमाल फितरत रुठिया होया भी उसकी कमाल फितरत नफरत आशकों को कर सकती नहीं इतनी बड़ी दलेर जमुर्द वेखी कोई सजदे विच भी आने चकदी नहीं।
0: वाह क्या कहने।
2: अच्छा वो याद नहीं करदा ते की होया
0: हाय हाय
2: आखिरी शेर ओ याद नहीं करदा ते की होया असा पल पल उसनु याद करसा करे जुल्म पे अनित मजलूम उते फिर भी रो रो अगो फरियाद करता।
0: वाह वाह वाह वाह
2: ऐसा दर बदर खाना बदोश होके ऐसा दर बदर खाना बदोश होके कोई चुगा कैस वांगू बर्बाद करता अपनी बस्ती नसीम उजाड़ के थे।
0: वाह
2: अपनी बस्ती नसीम उजाड़ के थे बस्ती यार दी सदा आबाद करता।
0: वाह वाह चौधरी साहब मन गया नहीं चौधरी साहब। वाह क्या
2: परवेज भाई जरा फिर पूरी महफिल सलाम उदाब जिंदगी ने वफा की फिर याद रखने याद रखने
0: बड़ी मेहरबानी
2: पूरी महफल जितने मेहमान ने सब याद रखने
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी
2: अल्लाह
0: सोने दे वाले बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया बहुत रब रखा बहुत शुक्रिया। वाओ ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है चौधरी फरियाद साहब ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया कमाल ही करते हैं और हमेशा ही और जब यह माशाल्लाह आ रहे हैं माशाल्लाह और शिरकत करते हैं प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे शादाबाद रखे। यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है जितनी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है बड़ी ही प्यारी आवाज़ है इश्वाक रसूल वन एंड ओनली वन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजूर
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: माशाल्लाह जनाब आला आपने तो कमाल ही कर दिया इतना प्यारा गीत सब दोस्तों ने माशाल्लाह फ़ोन कर रहे हैं और माशाल्लाह लाइनें चमक रही हैं दमक रही हैं आपकी वजह से माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और बड़ा ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया बड़ा अच्छा लगा बहुत बहुत शुक्रिया
3: बहुत शुक्रिया सबका शुक्रिया सबको सलाम
0: जी जी
3: शारात सहारी है
0: हाय हाय
3: इतारो तुम तो सो जाओ सुकूते मर्ग तारी है सितारो तुम तो सो जाओ परेशान रात तारी है।
0: वाह वाह वाह वाह
3: हमें तो आज की शब तो फटे तक जागना होगा
0: हाय हाय हाय
3: तो फटे तक जागना होगा
0: वाह
3: यही किस्मत

0: है मोहब्बत में ये बाजी हम निहारी है।
1: क्या कहने
0: तारो तुम तो सो जाओ परेशान रात सारी है। तारो तुम तो सो जाओ सकूते मर्ग तारी है।
1: वाह

0: तो ही जाएंगे, भी कुछ बेकरारी है सितारों, तो सो जाओ परेशान रात सारी है सितारों, तुम तो सो जाओ कूते मर्ग तारी है। शुक्रिया जी,
1: बहुत ही खूबसूरत है मेरे भाई, क्या कहने, इतनी प्यारी आवाज़ आपकी, इतनी प्यारी आवाज़ है, असली आवाज़ है, वाह वाह वाह। और हमारे किदन भाई हैं, हमारी पापी जान सुमित्रा जी हैं मिल्टन किंग से, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने मैसेज भेज किया है, और बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने, बड़ा ही आपको माशा सराहा है, और बड़ा ही प्यार के साथ उन्होंने पसंद भी किया, और आपके जो दोनों के दोनों गाने उन्होंने शुक्रिया अदा किया, इतनी प्यारी आवाज़ है, उन्होंने कहा कि ये भाई जो है बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है, बड़ा ही अच्छे सिंगर, वाह जी वाह, अच्छे सिंगर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा कसम से, बहुत मजा आया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर, एनीवे वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, रब रखा, वाह जी वाह जी, कमाल कर दिए, वाह वाह वाह, और अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे मोहतरम हमारे भाई, वाह मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, और क्या कहने, और हमारा साथ देने हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त हैं, जितनी की मैं तारीफ़ करूँ कम है, यहाँ पर हमारा साथ देने हमारे मोहतरम हमारे भाई, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमारा साथ देने शुक्रान भाई भी हैं, हमारे भाई हैं मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, यहाँ पर उनको वेलकम कहेंगे, जिया कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, सत बिस्मिल्लाह कहेंगे, ये हमारा साथ देने हमारे मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
2: वालेकुम
1: अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे मोहम्मद रफी साहब आ गए मेरे भाई, कैसी तबीयत आपकी, ठीक ठाक, कैसी थी आपकी?
2: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह
1: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने गाना सुना होगा मेरे भाई का, इशफाक रसूल साहब ने बड़ा ही खूबसूरत आवाज है, बड़ी प्यारी गाना गुनगुनाया उन्होंने,
2: नो डाउट एट ऑल,
1: ब्यूटीफुल
2: बहुत ही अच्छा उन्होंने गाया, पहला भी गीत में वेरी नाइस गाया, और ये दूसरा गीत भी बहुत नाइस गाया,
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। और हम
2: सैल

0: गया।
1: वाह,
0: सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम, मुझे सुनने वालों पे लाखों सलाम। सभी से जुदा जिसका अंदाज है,
1: वाह,
0: जमी ता फलक जिसकी परवाज है,
1: आहा,
0: वही जिसपे हमको नाज है।
1: वाह
0: परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज है।
2: आए हाय, सदके सदके,
0: आए हाय, मजा आ गया,
2: मजा आ गया, चस आ गई जी, जीवा जीवा।
0: हाँ जी, और फरमाइश करते हैं आप परवेज खान जी,
1: जी, जी।
0: मुबीन अमीर इब्राहिम साहिल साइम चौधरी महबूब इलाही साहेब मुअज्जम चौधरी मुजफ्फर साहेब गुरुजी बाबी साहबा डॉक्टर मलक डॉक्टर हिम्मत कुमार डॉक्टर बशीर पाशा नर्स फरजाना एंड नर्स मिसेस जूली।
1: हाय हाय, क्या कहने,
0: दूर रह कर न करो बात करीब जाओ, दूर रह कर न करो बात करीब जाओ।

एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की,

आज बस में नहीं जज्बात करीबा जाओ, आज बस में नहीं जज्बात करीबा जाओ। सर्द झोंकों से बड़कते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से बड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात करीबा जाओ, जान ले लेगी ये बरसात करीबा जाओ, दूर रह कर न करो बात करीबा जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की जरूरत क्या है, इस कदर हमसे

काहे अब साथ करीबा जाओ, दूर रह कर न करो बात करीबा जाओ।

नजर दिल पे मारिए दीवाना, लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, लग जाए आपको ना किसी की नजर कहीं, घर जाके अपने हुस्न का सदका उतारिए, घर जाके अपने हुस्न का

जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात, जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात। उठिए किसी गरीब की किस्मत सम

अब कर ही दीजिए ना मेरे दिल का फैसला, अब कर ही दीजिए ना मेरे दिल का फैसला, यार हरे के यूं निगाहों के खंजर ना।

0: आज मुझे फिर पुकारिए दीवाना। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई मोहम्मद रफी साहब, आपने कमाल ही करते हैं हमेशा ही, और आज मैंने कमाल किया, इतना खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी से, बहुत बहुत शुक्रिया, वाओ ब्यूटीफुल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने, जितनी भी तारीफ करूंगा मैं, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह। दैट वॉज हमारे मोहम्मद रफी साहब, और कमाल ही करते हैं और हमेशा ही गुनगुनाते हैं, और क्या खूबसूरत इनकी आवाज़ है। यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हमारा साथ दे रहे हैं हमारे भाई हैं, भाई शुक्रान हैं, और क्या कहने इनका।
2: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हम इंतजार में हैं, और हमारे मोहतरम हैं यहाँ पे भाई भाई शुक्रान है, चौधरी रुखसार साहब का भी इंतजार हैं, गिदन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी, भाभी जान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, शकील साहब का इंतजार में हूँ, अब्दुल कयूम साहब का इंतजार में हूँ, माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, सब आएंगे, पापा जी आप ही आ जाएँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपका भी इंतजार हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ, हमारे में है शुक्रान, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, माशाल्लाह जितनी इनकी मैं तारीफ करूं कम है, और यहां पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी थी विदा मेरे भाई की?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी, कहते हैं कि जैसे फलों में बादशाह आम,
1: हाय हाय
4: फलों में बादशाह गुलाब,
1: वाह,
4: और हमारे सनराइज के जो बादशाह हैं वो हैं आप।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह, नाइट नाइट नाइट, माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, क्या कहने, वाह।
4: एक एक शेर है काविश तमीमी साहब का,
1: जी जी जी जी जी जी जी,
4: वो कहते हैं कि लगा वंज कासद मेरे यार नु आखी,
1: हाय हाय
4: तेरा काविश सख्त बीमार है,
1: हाय हाय हाय, क्या कहने,
4: फकत गुजारा सिस्कियां ते,
1: आहा
4: सामान दी तंग रफ्तार है,
1: हाय हाय बहुत ही गहरा, वाह जी वाह, क्या कहने,
4: आंखें होंठ दे सिसक दी तस्बीह दे,
1: वाह
4: तेरा सनम जिक्र हर वार है,
1: वाह वाह,
4: एडी ओखी यार शफा कोई नहीं,
1: वाह
4: तेंदे हिक दीदार दी मार है,
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह।
4: और गाना जो है वो बड़ा प्यारा है मेरा, माशाल्लाह मेरा मतलब के टॉप ऑफ द लिस्ट है, मेरी फेवरेट लिस्ट में,
1: वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है जी।
4: कोई जब तुम्हारा
1: हाय हाय हाय
4: तोड़ दे तड़पता हुआ जब,
1: वाह,
4: कोई छोड़ दे,
1: वाह,
4: तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
1: हाय हाय
4: मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे,
1: हाय हाय हाय,
4: कोई शर्त होती नहीं प्यार में,
1: वाह,
4: मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया,
1: वाह,
4: नजर में सितारे जो चमके जरा बुझाने लगे आरती का दिया,
1: वाह,
4: अंधेरों में अपने ही घिरने लगो खुद अपनी नजर में ही गिरने लगो,
1: वाह
4: तब तुम मेरे पास आना प्रिये,
1: हाय हाय
4: मेरा सर झुका है झुका

0: जाएंगे।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: अभी रूप का एक सागर हो तुम, कंवल जितने चाहो

0: कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। आपकी सारी टीम को सलाम, आपको सलाम। मुझे उनके नाम नहीं आते माशाल्लाह, जितने भी
1: लिसनर्स
0: आते हैं, जितने भी माशाल्लाह गुनगुनाते हैं, आपको सलाम मेरी तरफ से।
1: और आपके लिए हमारे भाई हैं, हमारे चौधरी फरियाद साहब हैं, वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने बड़ी तारीफ की है, उन्होंने कहा कि एक और गाना होना चाहिए। और क्या आवाज आपने पाई है मेरे भाई, और देखो कि पाकिस्तान से कॉल आ रही है माशाल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह,
0: क्या गाना और हो जाए,
1: एक और हो जाए, क्या कहने। वो ने कहा कि इतनी खूबसूरत की आवाज है, बड़ी प्यारी आवाज है, और माशाल्लाह क्या कहने, वाह वाह।
0: चले जी फिर मैं सुनाता हूँ।
1: जी जी,
0: ला ला ला ला ला ला,
1: वाह क्या कहने,
0: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला,
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: ओ साथी रे तेरे

0: वाह,
1: फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे

0: थैंक यू।
1: कमाल ही कर दिए मेरे भाई, दोनों को दोनों गीत इतने पॉपुलर गीत, इतने खूबसूरत है और बहुत ही प्यारे, और क्या आवाज़ मेरे भाई ने पाई है, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और आपका शुक्रिया अदा करें हमारे भाई अली भाई, शुक्रिया अदा करें चौधरी फ़रियाज़ का, शुक्रिया अदा करें बहुत बहुत शुक्रिया, और सिमी जी शुक्रिया अदा करें बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बाहर आ गए मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, बहुत मज़ा आया मेरे भाई, बहुत ही मज़ा आया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह क्या कहने जी, क्या कहने, ये थे हमारे भाई हमारे दोस्त, जिनकी मैं तारीफ करूं कम है, और बहुत ही खूबसूरत गाने, दो गाने गुनगुनाए, बड़े प्यारे गाने, बड़े ही खूबसूरत गाने, और क्या कहेंगे क्या कहेंगे, जितनी भी इनकी तारीफ करूं कम है। और शकीका का हम शुक्रिया अदा करते हैं, शकीका बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी रुखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, वेलकम जी एन खुश आमदीद आपको भी कहेंगे, और आपका भी इंतज़ार है माशाल्लाह, क्या कहेंगे आपके बारे में, जितनी तारीफ करूँ कम है, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही फिर लाजवाब हो रहा है यहाँ पर प्रोग्राम, और आप सब आ रहे हैं माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी, अब्दुल कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, हमें अच्छा लगे कि आप हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ हम छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हम बात करेंगे हमारे भाई चौधरी रुखसार साहब से, साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, और वो भी बड़ी खूबसूरत है, बड़े ही प्यारे इंसान है, बड़े प्यारे इंसान है, और शेर शायरी गाना टपे ओए होए होए, क्या कहने इनके बारे में, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा। और यहाँ पर हमने करना है टाइम चेक, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और डॉक्टर मालिक साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही मैं याद करें फ्लश करें, बहुत शुक्रिया, और आपने भी दावत दी है माशाल्लाह, और सबको माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा है, और आप कह रहे हैं कि हम प्रोग्राम सुन रहे हैं, पूरी फैमिली सुन रही है, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: Alright, time in the studio is 42 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, ब्रेक के फौरन बाद हम गुफ्तगू करेंगे हमारे भाई के साथ, और बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ी ही नायाब उनकी आवाज़ है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है, शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
1: राइट, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आ रहे हैं माशाल्लाह, और हमारी खुशी नसीबी है कि हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे भाई हमारे दोस्त है, जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, और वाह वाह वाह क्या कहने, आज तो क्या कहने के, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और महक आ रही है, खुशबू आ रही है यहाँ पर माशाल्लाह, और यहाँ पर हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम हमारे दिल अजीज़ है, और आपको पता किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, वो कौन है और कहाँ से हैं और क्या कहेंगे, आप रेडी हो तैयार हो कि ये कौन आ रहा है हमारी महफल में, इतना खूबसूरत हमारे जो बड़े ही खूबसूरत हमारे लाडले, इनके इनको लाडले कहता हूँ, और इनको आपको पता है शला की भी हुई, शला में बता दूँ इनको मैं क्या कहता हूँ, और शला टेल यू लेटर ऑन, और आप क्या समझते हैं मैं बता दूँ या थोड़ी देर के बाद में बताऊँ, क्या समझ क्या हाल है, आपने 50-50 करना है, कॉल फ्रेंड करना है, या आपने क्या करना है, चलो हम बता देते हैं, यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे दिल अजीज हमारे मोहसिन, बड़े प्यारे बड़े खलूस बड़ी मोहब्बत बड़ी चाहत है बड़ी उल्फत है, बहुत ही जितने भी मैं क्या कहते हैं पूरी डिक्शनरी जो ना इनके नाम पे है, और यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु,
5: अऊज़ु बिल्लाहि शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, चश्मे रोशन दिले माशा बाकमाल लाजवाब बहुत आला बाइज्जत बाबकार बाजुक बाशुक हर दिल जी शख्सियत और नहायत नफीस नहायत लतीफ बहुत शफीक असीम मेरे चैंपियन भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और ये आपके लिए और कैसी तबीयत है मेरे भाई की, आप ठीक ठाक और सेहत ठीक है आपकी?
5: अल्लाह ताला का बड़ा करम है और माशाल्लाह आप जैसे अनमोल, आप जैसे बाइज्जत और साहिबान अरफान, माशाल्लाह इतने साहिबान इलम की दुआएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, हम मिजाज ग्रामी कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का शुक्र शुक्र शुक्र करम है। और देखो इतना खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा है माशाल्लाह, एक बढ़कर एक कॉलर हमारा साथ दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, वो भी फ्री में, कोई खर्चा नहीं है, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ लालच नहीं है, क्या है, फ्री में दुआएं दे रहे हैं माशाल्लाह हमें, आ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद करें, एंजॉय करें। और हम इंतजार में थे आपके लिए, और हम यहाँ पे ऑन एयर कह रहे हूँ कि हमारे भाई के लिए दुआ करनी है, हमारे शकील साहब के लिए दुआ करनी है माशाल्लाह, उनके लिए खसूसी दुआ करनी, थोड़ा जा उनके साथ है, थोड़ा जा एक पर्सनल मैटर है, तो उनके लिए हम दुआ करेंगे और आप भी उनके लिए खसूसी दुआ करनी है।
5: जी इंशाल्लाह जरूर। लेकिन सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जितनी आप हौसला अफजाई, जितनी इज्जत अफजाई आप करते हैं, क्योंकि मैं हकीर, मैं नाचीज, मैं खाकसार इस काबिल से नहीं हूँ जितने आप अल्लाह आबाद से नवाजते हैं। यकीन करें कि ये आप लोगों को डिजर्व करते हैं, और मेरे जैसे छोटे बंदे को ये जो अल्लाह आबाद आप देते हैं ना, मैं कम इल्म बनता हूँ, और जितने माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में इतने साहबान इल्म, साहबान अरफान, साहबान मार्फत लोग आते हैं ना, ये तो मुझसे बहुत आला और अरफा है
1: माशाल्लाह। क्या कहने, क्या है, ये आपकी खूबसूरती है, ये इसीलिए मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखो इतने अच्छे हैं हमारे भाई हैं, हमारे उस्ताद मोहतरम में, हम उस्ताद भी आपको कहता हूँ माशाल्लाह, हम सीखते हैं आपसे, सीखते हैं मेरे भाई। और काश ये दुनिया में ना ऐसे ही हम जो ना सब ऐसे हों और दुनिया कहाँ कहाँ से पहुँच जाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलो जो अगला प्रोग्राम हुआ उसके वाले से हम बात करेंगे, आपके वाले से उस वक्त बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज बात करूँगा ना तो ये ना हो कि कहीं और जगह पर चली जाए, तो उस वक्त मैं बात करूंगा कि संडे के प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो वो फिर मैं आपके लिए एक मैं प्रपोजल है आपके लिए, और प्रपोजल लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए इंशाल्लाह, तो वो उसमें बात करेंगे, तो कि हमें भी आपकी जैसी ज़रूरत है, आप जैसों की ज़रूरत है माशाल्लाह, और पूरी दुनिया की ज़रूरत है आप जैसों की, जो अच्छे इंसानों की माशाल्लाह ज़रूरत है, तो हम भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए भी अच्छा हो जाए माशाल्लाह।

0: पूछते हैं, ये मुझे पहले ये बताओ
1: जी। ये तो माशाल्लाह, वो कहते हैं तो खुद अच्छा होता है ना उसको सब अच्छे लगते हैं के हाले।
0: हाँ।
1: वो कहते हैं कि जिसके पास जो होता है ना वो ही बांटता है, वही तकसीम करता
0: है। हाँ,
1: क्योंकि जितने सामीन है वो सब है इतने अच्छे और इतने खूबसूरत हैं माशाल्लाह। वो कहते हैं कि वो एक गुलदस्ता
0: है। हाँ, ये फूलों का गुलदस्ता है। देखो कि फूल भी देखो ना, वो वही फूल है, उनके साथ कांटे लगे हुए, ठीक है, कांटे उतार दो, काट दो तो वो फूल बन जाता है। वो फूल किसी को दे दो तो वो उसमें महक आती है, खुशबू आती है, वही फूल जो ना एक क्या न क्या बन जाता है, वही फूल है, उसके साथ कांटे लगे हुए।
1: बेशक सही फरमा रहे हैं। तो सॉरी मेरा हाल है, मैं आपका बहुत ही ज्यादा।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप जैसे है माशाल्लाह, आप जैसा हमारी खुश नसीबी है कि आप आए तो आपने हमें इतना खूबसूरत आपकी जो अल्फाज हैं, जो आपकी बयानी है, आपके कलाम है माशाल्लाह। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पर मैं ख़त्म करूँ, ये पहले मुझे बताएं। तो आज आप हमारे लिए क्या लेके आए?
1: सारा यकीन करें, मेरा तो दिल करता है पूरी, मैं पूरी कनात आपके कदमों में निछावर कर दूं, यकीन करें, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा।
0: माशाल्लाह, बस चलो को ट्रेन ट्रेन ट्रेन ले ले
1: सॉरी मैं कहते ना आज, लेकिन मेरे पास
0: आप जैसा माशाल्लाह, आप जैसा माशाल्लाह भाई, और जो सब आ रहे हैं माशाल्लाह एक से बढ़कर एक हैं, और अल्लाह ताला हमेशा आपको कामयाबी दे, सेहतमंद कर जिंदगी दे, इज्जत वाली जिंदगी दे। वो हमेशा ही बात करता हूँ, जो आपके पास है वही आप दूसरों को भी देंगे, तो वही खूबसूरती। देखो कि आपने कभी देखा होगा कि इत्र की जो दुकान है, शॉप है, जो परफ्यूम की शॉप है, तो कई कोई पूछता नहीं कि ये किसकी शॉप है, क्योंकि वहाँ पे महक आ रही है, खुशबू आ रही है। कभी नहीं किसी ने पूछा ये कौन सी दुकान है, क्योंकि वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाता है कि ये दुकान किसकी है, कहाँ की दुकान है।
1: क्या बात है, क्या बहुत बहुत गहरी बात
0: कर दी है ना। देखो ना, ये मैंने सीखा है, आपसे सीखा है, और मैं शायद आपसे सीखता हूँ। और कभी नहीं किसी ने ये नहीं पूछा है कि कहाँ किसकी दुकान है, यहाँ पे कभी भी नहीं वहाँ पे लगा होगा कि माशाल्लाह देखो कितनी खूबसूरत। जैसे आप जैसे माशाल्लाह मेरे भाई आए और मीठे, इसीलिए मैं आपका नाम ही मैंने रख दिया मीठा, मीठा भाई, और इतनी खूबसूरत आपकी जो गुफ्तगू होती है, जो आपकी जो जो अल्फाज जो वहाँ बयानी करते हैं माशाल्लाह। तो काश काश काश जो ना मैं कुछ कह सकता यहाँ पे, मैं संडे के प्रोग्राम में कहूँगा उस वक्त जो ना वो जो कहते हैं ना कि जो जो भी मसला वो हल हो जाएगा, तो उसमें जो हम संडे में प्रोग्राम में करेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो जो एक और वो कहानी चल पड़ेगी। तो अभी मैं कहूँगा ना तो वो एक और कहानी चल चलेगी, तो उसमें हम रहने देते हैं तो संडे के प्रोग्राम में। तो चलो, आप हमारे लिए क्या आज लेके आए, हमारी शायरी करेंगे या हमारे हमारे भाई के लिए आज नाम कर दें हमारे शकील साहब के लिए, वो सुन रहे प्रोग्राम।
1: अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला जनाब उसकी उनकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, क्योंकि वो हमारे भी उस्ताद मोहतरम है और हमने जो भी सीखा है ना वो उनसे सीखा है।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये खूबसूरती होती है। देखो हमेशा ही आप मेरे वो मुर्शिद हैं, और माशाल्लाह आप हमारे उस्ताद हैं, वो हमारे मुर्शिद हैं, और वही बात हो रही है कि आज जो है ना हम दुआ को हैं उनके लिए खुशी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, किसी से मुहताज ना करे, और जो भी है मसले मसाइल उनके हल हो जाएँ, और जो अगला जो प्रोग्राम है उसमें शिरकत करें, कि हम जो है ना बेताब हैं और बेताब हम इंतज़ार में हैं कि आएंगे माशाल्लाह। तो चलो, आप हमारे लिए आज कौन सा तोहफा लेके आए हैं?
1: जी मैं बिस्मिल्लाह एक छोटी सी पोएट्री लेके आया हूँ, लेकिन मैं फिर उस्ताद मोहतरम को डेडिकेट करना चाहता हूँ। अल्लाह
0: डेडिकेट करें, डेडिकेट करें उनके लिए, उनके वो सुन रहे हैं, वो उन्होंने हेडफोन लगा के वो सुन रहे हैं,
1: लेकिन मेरे आप जब कहते हैं ना कि मेरी टांगे कांप रही हैं कि मैं मैं उस्ताद मोहतरम को किस तरह, क्योंकि मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जब मैं कुछ बोलूँ ना तो मेरे उस्ताद ना मुझे सुनते हो, क्योंकि जब वो सुन रहे हो तब फिर मैं बोल नहीं सकता।
0: कदर करनी चाहिए उस्तादों की, कदर करनी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ी जरूरी है।
1: वल्लाह बा खुदा मेरे वही तो उस्ताद है, वो एक ड्यूजबरी में है, मोहतरमा सैम जी है, तो एक शकील साहब है, जिनसे मैंने चलना सीखा है, जिनसे मैंने बोलना सीखा है। वल्लाह अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों की जिंदगी करे, अल्लाह ताला उनकी नस्लें क़यामत तक आबाद रखे, और अल्लाह ताला इन शख्सियात को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी ता फरमाए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं फर्दन सभी के नाम लूँ, अतीका आपी की या चौधरी फरियाज साहब की जो लिस्ट है ना, सभी को जनाब मेरी तरफ से जो है ना वो बहुत बहुत सलाम, और ये मैं पोएट्री साहब को जो है ना डेडिकेट करना चाहता हूँ। जाते सर
0: जी जी, अरशाद अरशाद अरशाद
1: शेर लिखता है, सुबह आता हूँ यहाँ और शाम हो जाने के बाद लौट जाता हूँ मैं।

0: घर नाकाम हो जाने के बाद।
1: वाह क्या कहने क्या कहने।
0: शेर लिखता है डांप देते हैं हाफिज को इश्क की पोशाक में।
1: वाह जी वाह क्या कहने।
0: लोग सारे शहर में बदनाम हो जाने के बाद।
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने।
0: बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत का बेहद मशकूर।
1: वाह।
0: एक हजूमे याद होगा उन गली कूचों के बीच।
1: वाह।
0: देखो शहर दिल की रौनक शाम हो जाने के बाद।
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत
0: शुक्रिया बहुत शुक्रिया मैं नियाजमंद हूँ आपका।
1: वाह जी वाह क्या कहने बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही लाजवाब। क्या
0: याद याद करने के सिवा अब काफी क्या सकते हैं हम। भूल जाने में तुझे नाकाम हो जाने के बाद।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब
0: आखिरी आखिरी शेर परवेज भाई आपकी गुजारिश करना चाहता हूँ और तमाम रोशन समाजों की नजर करना चाहता हूँ और उस्ताद उस्ताद साहब से दुआ लेने के लिए और आपसे दाद लेने के लिए आखिरी शेर।
1: वाह जी वाह जी वाह क्या कहने।
0: खुद जिसे मेहनत मशक्कत से बनाता हूँ जमाल छोड़ देता हूँ वह रास्ता आम हो जाने के बाद।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय मकरन जी मकरन मकरन मकरन
0: बहुत शुक्रिया
1: बहुत शुक्रिया क्या कहने
0: बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला मेरे साथ साथ को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आखिरी शेर है
1: जी जी।
0: खुद जिसे मेहनत मशक्कत से बनाता हूँ जमाल छोड़ देता हूँ रास्ता आम हो जाने के बाद।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय बहुत ही गहरा क्या कहने मेरे भाई का क्या कहने बहुत खूबसूरत लाजवाब लाजवाब कमाल कमाल कमाल।
0: आपकी मोहब्बतें हैं ये आपकी चाहते हैं और माशाल्लाह ये आपके रोशन समातों के इतने अच्छे सामईन हैं
1: जी जी।
0: जो माशाल्लाह इस गहराई से और इतनी दिलचस्पी के साथ ये मेरे टूटे फूटे अल्फाज सुनते
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत क्या कहने।
0: आप चौधरी प्रयाज साहब को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता फरमाए। वाजिद भाई बीमार है और भी जितने हमारे भाई हमारे बहन हमारे बुजुर्ग हमारे
1: जी जी जी
0: सभी को तंदुरुस्ती वाली गीता
1: आमीन आमीन बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक मेरे को खुश रखे। बहुत अच्छा लगा बड़ा ही मजा आया बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच कमाल का दी बहुत बहुत शुक्रिया रब रखे बहुत शुक्रिया रब रखे बहुत शुक्रिया। वाह ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त और यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कौन और कहाँ से हैं और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो आप हवा के दोष में हेलो और यहाँ पे इनके साथ बात करता हूँ क्योंकि उनकी आवाज़ नहीं मेरे ख्याल में जा रही है तो उनके साथ यहाँ पे

0: ओके, क्या क्या क्या कहने क्या कहने, और टाइम बहुत ही कम है, और हमारा साथ देने सैयद एहसान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहू।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और यहाँ पे टाइम बहुत ही कम है, और अभी दो तीन मिनट रह गए। एम हानी हमारा साथ दे रहे हैं, और अभी दो मिनट रह गए हैं हमारे प्रोग्राम के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए और देर से आए हैं, क्या कहने।
1: I know, we've been out celebrating something.
0: Okay, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारका हूँ आपको। अच्छा, आपने क्या सुनाना है दो मिनट में, क्या सुनाना है? और
1: my favorite song, जी जी, आपका गाना है।
0: जी जी जी,
1: तो उसके कोई कोई जरूरत नहीं रखी, नो म्यूजिक।
0: जी जी जी,
1: तो उसके बोल है
0: जी,
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत,
0: हाय हाय हाय, क्या कहने,
1: और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, वो बच बच के चलना हुजूर, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, वो बच बच के चलना हुजूर, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत, और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, वो बच बच के चलना हुजूर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण मेरे प्यार की सीमा, मेरा प्यार है इतना ऊंची जैसे राम रहीम, जैसे राम रहीम, मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत, और जहाँ की खाक मोहब्बत, कहीं तुम्हें प्यार ना हो जाए, बच बच के चलना हुजूर, बच बच के चलना हुजूर, हाय
0: हाय हाय,
1: बच बच के चलना हुजूर।
0: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, काश मेरे पास टाइम होता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा कि आप आए। इंशाल्लाह जो संडे की शाम होगी आपके नाम होगी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत
0: ओके, लाफिज लाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, लाफिज। और यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे हमारे साथ एम खान जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एम खान जी, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, मैं मदद चाह रहा हूँ आपसे।
2: कोई आइंदा मैं
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थोड़ा होल्ड करेंगे, मैं आपकी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारा साथ ही, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे न्यूज़ ब्रेक करनी है, अल्लाह हाफिज़ से बाहर।
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 11, British tour guide who's been tested in a Dutch hospital for hantavirus says he has no idea how long he'll be there. Martin Anstey, who's 56, is one of three people who've been evacuated from a cruise ship. UK health officials say two other passengers are self-isolating here. Spain's hoping the rest can disembark in Tenerife, though the Canary Islands president's not happy. Our correspondent Thomas Moore says rules appear muddled.
5: If you're Spanish, then they will take precautions and keep you in isolation even if you're not showing any symptoms. Everybody else can get on board a commercial airliner along with other holidaymakers and go home.
4: Donald Trump's again insisting a deal with Iran could be close.
6: Now we're doing well, now we have to get what we have to get. If we don't do that, we'll have to go a big step further. But with that being said, they want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
4: The US president's been speaking at the Oval Office, repeating his warnings against Tehran having a nuclear weapon. We're told of a momentum behind the scenes. Last night, America paused a plan which would have safely guided ships through the Strait of Hormuz, where oil tankers are blocked. Airlines have cancelled just over 13,000 flights this month. New data from analytics firm Cirium comes as jet fuel costs soar due to the war in the Middle East. Parents in South Wales are being urged to check their children are washing their hands properly after a hepatitis A outbreak in Barry. Public health officials say cases in several households suggest the infection could be spreading locally. Vaccines are being offered to close contacts. Arsenal will face holders Paris Saint-Germain in the Champions League final. The French side drew 1-1 with Bayern Munich in Germany, meaning they progressed 6-5 on aggregate. And Manchester City have been crowned Women's Super League champions. Arsenal's 1-1 draw with Brighton means they can't be caught. That's the latest. I'm Cam Hall.